0: listening to Krish.
1: Let's go!
2: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स 11th जुलाई आज है. अगर आपका जन्मदिन है बहुत ही जल्दी आपको वेरी हैप्पी बर्थडे विश करेंगे. क्रिश के साथ है, रेडियो पब जारी है. इट इज सैटरडे, लॉन्ग वीकेंड है, तो आई एम श्योर बाहर आप भी निकल चुके हैं, चाहे शॉपिंग करने के लिए या फिर फैमिली टाइम बिताने के लिए कहीं पर आप जा रहे हैं. तो स्वागत है आपका एंटरटेनमेंट, यहाँ से आप तक हम पहुँचाते रहेंगे. योर लॉन्ग वीकेंड स्टेशन, हम पर आपके लिए वो तमाम सॉन्ग्स जो आपको पसंद है वही पेश किए जाएंगे, बिकॉज वी प्ले बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.
1: Yeah.
0: Radio Pop.

0: moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स क्रिश का साथ है। आज अगर आपका जन्मदिन है अ वेरी हैप्पी बर्थडे टीम हम की ओर से आपको हम विश करना चाहेंगे। बहुत सारी खुशियां, बहुत सारी बधाइयां हम आपको देना चाहेंगे। कुछ स्पेशल हो रहा है, कुछ प्लान किया गया है या आगे चलकर भी कुछ होने वाला है आपके लिए, तैयारियाँ हो रही है, तो इसके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको हम देना चाहेंगे। बस आपको हमारा साथ देना है। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन टीम हम की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। सुनते रहो हम, मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ।

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Big savings in store is long weekend at Mitre 10 Mega Westgate of Henderson. 15% off pet toys, 20% off indoor plants, and save on Water ID Advanced Interior 10 liter. July 9th se 12th tak. Sirf Mitre 10 Mega Westgate of Henderson mein.
2: Reliance Ventilation System.
3: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
2: Moisture और ventilation का problem लगता है।
3: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है।
2: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं।
4: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
5: Don't put up with a damp, cold bathroom this winter. With a shower dome shower top, your bathroom will be warmer, drier, healthier. And now every shower dome comes with a lifetime guarantee. That'll give you the warm fuzzies. Showerdome.co.nz.
6: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
7: Indelible Homes, your building expert. Indelible Homes.
8: आपके सामने एक red button है. नहीं दबाना था।
9: The madness is back, Dhamaal 4.
10: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा।
9: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jafri. Return in Dhamaal 4, directed by Indra Kumar.
11: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी?
9: Watch the biggest family entertainer, Dhamaal 4, in cinemas now.
12: पता नहीं ऐसे dangerous situations में automatically आके कैसे आ जाता?
13: Auckland Transport is upgrading your rail network this July as we get closer to more trains more often with City Rail Link in 2026. Between Thursday 9th July and Sunday 12th July, all train lines will be closed for a City Rail Link timetable trial and for essential rail upgrades. This is the best time for AT and our partners to carry out the upgrades. Buses will replace all impacted services. For details, visit at.govt.nz/matariki2026.
14: Feed the faith with the 1NZ Warriors range, exclusively at Wendy's. Try the new signature burgers, salted caramel frosty and cookie dough bites. Order on the Wendy's NZ app to win weekly prizes and lunch with the players. Only at Wendy's. T's and C's apply.
15: Freedom Spend More Save More sale is on now. Spend $500, save 15%. Spend $1,500, save 20%. Spend $2,500, save 25%. The more you spend, the more you save. Only at Freedom.
16: The beat of Bollywood.
17: World's best. Hamari koi branch nahi hai.
18: Yo.
16: Radio Pub.
19: रेडियो पब आप सुनते रहो, मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। प्यारे गाने आप तक हम पहुँचाते रहेंगे और कुछ ऐसी बातें स्पोर्ट्स रिलेटेड वो भी लेकर आएंगे। ब्लैक कैप्स को नेम किया गया है फॉर द वेस्ट इंडीज़ ओडीआई टूर। मैं आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही जल्दी लेकर आऊँगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया विन रिकॉर्ड 7th वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, इस पर भी जानकारी हमारे साथ होगा। नोवे नॉक ब्राज़ील आउट ऑफ फीफा वर्ल्ड कप, ये भी हमारे पास है आपके साथ शेयर करने के लिए।

0: पिंटरेस्ट पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं।
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पे ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
2: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
3: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
4: Sorry about that.
3: But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true. Because it is true.
4: Kogan Mobile. True Aussie value.
3: Terms and conditions apply.
5: Farmers' long weekend sale is now on, with 30 to 50% off kitchen, dining, bedding and towels. Up to 50% off furniture plus super deals and half-price sleepyhead beds. Farmers' long weekend sale now on. Conditions and exclusions apply.
6: The King Living Winter Sale ends soon. Save up to 50% on Australian-designed, award-winning furniture. Come home to the future of furniture. Come home to King. Sale ends soon. Shop online or visit a King Living showroom today.
7: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
8: Indelible Homes, your building expert.
9: Trade Depot celebrates Matariki this week with two exceptional deals. Huge Vogue side-by-side fridge freezers, just $599. 7-star heat pump dryers, just $499. Shop online or in store at Trade Depot, Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.

Radio Pub. रेडियो पब आपके लिए जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। न्यूजीलैंड ने अनाउंस किया है इट्स स्क्वाड फॉर द अपकमिंग ओडीआई सीरीज अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज। मैट फिशर ने रिसीव किया है इस मेडन ओडीआई कॉल अप आफ्टर इम्प्रेसिव डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेज। वहीं पर जैकब डफी रिटर्न्स टू द नेशनल साइड आफ्टर मिसिंग द इंग्लैंड टेस्ट सीरीज। मिशेल सेंटना को कैप्टन चुना गया है, ही विल कैप्टन द टीम ड्यूरिंग द 5-match सीरीज। और ये टूर लेटर दिस मंथ शुरू होगा इन द करीबियन, आई थिंक ये गुआना वेस्ट इंडीज़ में खेला जाएगा। अभी कुछ देर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड बनाया है 7th वीमेंस T20 वर्ल्ड कप के साथ। मैं क्रिश आपका साथ दे रहा हूँ, कुछ और भी स्पोर्टिंग न्यूज़ एक एक करके आपके साथ हम शेयर करेंगे रेडियो पब में।

Yo. रेडियो पब आपके लिए जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। बॉलीवुड न्यूज़ भी हमारे साथ है, के लिए आप बने रहे क्योंकि आपके लिए हम लेकर आएंगे बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड खबरें जो आपको पसंद है, जो आप सुनना चाहते हैं। आपके फेवरेट स्टार्स क्या कर रहे हैं इन दिनों बॉलीवुड में, ग्लिट्स एंड ग्लैमर दुनिया में क्या होता है। वैसे वेंसडेज को लेकर आते हैं आपके लिए हम मिड वीक मसाला, जिसमें तमाम बॉलीवुड न्यूज़ रहता है फ्रॉम 8 to 9 PM, जो तमाम लेटेस्ट अपडेट्स है वो शेयर करते हैं आपके लिए। लेकिन बॉलीवुड न्यूज़ तो डिवेलप होते रहता है, तो कुछ और भी लेटेस्ट जानकारी हमारे हाथ लगा है जो इसी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। क्रिश के साथ ही सुनते रहो रेडियो पब 89.9।

एक एक करके कुछ स्पोर्ट्स न्यूज भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने जीता है रिकॉर्ड 7th वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया ने डिफीट किया इंग्लैंड को बाय 7 विकेट्स इन द वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप फाइनल। बेथ मुनी और पोहेब लिंचफील्ड ने लीड किया द सक्सेसफुल रन चेज। ये विक्ट्री ऑस्ट्रेलिया को एक रिकॉर्ड एक्सटेंडिंग 7th वर्ल्ड टाइटल दिया है। इंग्लैंड होम क्राउड एट लॉर्ड्स ने ये विटनेस किया एक डोमिनेंट ऑस्ट्रेलियन परफॉर्मेंस, और ऑस्ट्रेलिया अभी भी कंटिन्यू कर रहा है टू सेट द बेंचमार्क इन द वुमेन्स क्रिकेट। ये खेल लॉर्ड्स लंदन इंग्लैंड में हुआ था।

0: moment. Krish ka magic. Only on Hum.
1: सुनतेरा रेडियो पब आपके लिए इट्स ऑल अबाउट द गेम. ये सेगमेंट भी आपके लिए हम लेकर आते हैं जिसमें बहुत सारे बॉलीवुड नॉट बॉलीवुड लेकिन स्पोर्ट्स न्यूज आपके लिए रहता है. और आज स्पोर्ट्स न्यूज में बहुत कुछ मैं आपको बता रहा हूँ. क्रिकेट के बारे में जानकारी दिया लेकिन अभी नॉर्वे ने स्टंट किया है ब्राजील को विद ए 2-1 विक्ट्री इन द फीफा वर्ल्ड कप राउंड ऑफ 16. एर्लिंग हालैंड ने स्कोर किया ट्वाइस टू सेंड नोवे इनटू द क्वार्टर फाइनल्स. ब्राजील को एलिमिनेट किया गया अर्लियर देन मेनी फैंस एक्सपेक्टेड. और ये जो विन है इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अपसेट्स ऑफ द टूर्नामेंट. नोवे विल नाउ फेस इंग्लैंड इन द नेक्स्ट राउंड. ये खेल ईस्ट रुथरफोर्ड न्यूजर्सी में खेला गया था 5 जुलाई को. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ कुछ देर में. इंग्लैंड बीट किया मेक्सिको को इन द वर्ल्ड कप थ्रिला. इस पर जानकारी हम लेकर आए हैं आपके लिए. सुनते रहो हम.
0: You're listening to Krish.
2: Let's go!

0: के दिन चाहे 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स। क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस। बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
1: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111. Indelible Homes, your building expert.

0: Radio Pub. Aapka Moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: रेडियो पब आपके लिए जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. वेलकम बैक एवरीवन. अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लवली लिसनर्स. लॉन्ग वीकेंड जारी है. लॉन्ग वीकेंड में कुछ और भी इंटरेस्टिंग टिप्स और लाइफ हैक्स भी शेयर करेंगे आपके लिए, लेकिन कुछ स्पोर्ट्स न्यूज़ भी इसी घंटे पर भी आपके लिए रहेगा. चार्ल्स लेक्लर्क विंस ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, इस पर जानकारी इसी घंटे पर रहेगा. साथ में इंग्लैंड बीट मेक्सिको इन वर्ल्ड कप थ्रिलर, ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे. साथ ही में राहत फतेह अली खान शो होने को है, इस पर जानकारी. कॉमेडी नाइट होने को है, इस पर भी बातें आपके साथ हम करेंगे. हम पॉडकास्ट पर भी जानकारी है, ग्रेट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, क्योंकि आपको पॉडकास्ट सुनना होगा, इस पर भी जानकारी आपके लिए.

सुनते रहो आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स क्रिश का साथ है एंड मिडडे तक इनफैक्ट मिडडे से लेकर 6 PM तक हमारा साथ रहेगा रेडियो पब में. इंग्लैंड ने मेक्सिको को बीट किया, को-होस्ट मेक्सिको को 3-1 से बीट किया इन अ ड्रामेटिक राउंड ऑफ 16 क्लैश. और जूड बेलिंगम और हैरी केन ने स्टार किया फॉर द 3 लायंस. इंग्लैंड प्लेड मच ऑफ द मैच विद 10 मैन, 10 लोगों के साथ इन्होंने प्लेयर्स के साथ में मैच खेला और विक्ट्री सिक्योर्ड अ प्लेस इन द फीफा वर्ल्ड कप आफ्टर क्वार्टर फाइनल्स कहा गया है. और ये जो खेल है इट इज़ बीइंग हेल्ड एज वन ऑफ द इंग्लैंड्स फाइनेस्ट नॉकआउट विंस. 6 जुलाई को ये खेला गया था मेक्सिको सिटी मेक्सिको में. क्रिश के साथ है और भी स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ आप तक हम लेकर आएंगे, लेकिन याद रहे रेडियो पब में आपके लिए कुछ अलग अलग प्रोग्राम्स भी हम लेकर आते हैं. ऑल अबाउट द गेम मैंने आपके लिए शामिल किया, बहुत सारी न्यूज़ आपको बताए अबाउट द गेम्स दैट्स हैपन और इट इज़ गोइंग टू हैपन, फ्यूचर गेम्स के बारे में भी, लेकिन डिकोडिंग द गेम के बारे में जानकारी मैं आपके लिए बहुत ही जल्दी लेकर आऊँगा.

0: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर।
1: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
2: Trivision Entertainment and Ashik Homes Limited, in association with Mega Finance, Mortgages and More, and Peace of Mind Insurance, presents The Great Indian Comedy Night, featuring the Kapil Sharma Show stars Krishna Abhishek and Rajiv Thakur live on stage.
3: Wow, wow, mashallah, kya baat hai, kitna acha dance karte. Tum Govinda ka kuch lagta hai kya?
2: Saturday, 18th July, 7 p.m. at Victory Convention Center. Book your tickets now at bookmyevent.co.nz.
3: Mashallah, bahut acha, very nice.
4: The King Living Winter Sale ends soon. Save up to 50% on Australian-designed, award-winning furniture. Come home to the future of furniture. Come home to King. Sale ends soon. Shop online or visit a King Living showroom today.
5: Auckland Transport is upgrading your rail network this July as we...

You're listening to number one, हम playing Bollywood's biggest hits. Radio Pub में decoding the game एक ऐसा segment होता है जिसमें game के terms और rules के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ. अभी मैं सोच रहा हूँ कि कौन सा game के rules और जो terms के बारे में मैं आपके साथ share करूँ, और बहुत ही जल्दी ये आपको मैं बताऊँगा. क्रिश का साथ है, Radio Pub सुनते रहो. 11th July है ये, और 6 PM तक मैं आपका साथ दूंगा.

0: the moment. Krishka Magic. Only on Hum.
1: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. याद रहे म्यूजिक स्टेशंस को भी आप रोवर के जरिए सुन पाएंगे. हम रिवाइंड में आप 60s और 70s हिट्स सुनेंगे. 80s जूक बॉक्स में काफी 80s ईरा ऑफ बॉलीवुड सॉन्ग्स आप सुनेंगे. फीजी भजन्स में 24/7 फ्री भजन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें फीजीज बेस्ट आर्टिस्ट के कीर्तन आप सुन पाएंगे. चढ़ती कला है पंजाबी हिट्स, फीजी कीर्तन संग्रह, बिगर चॉइसेस ऑफ कीर्तन आर्टिस्ट यहाँ पर होंगे आपके लिए इनके गाने सुनने का मौका. और राहत फतेह अली खान फॉर द लव ऑफ सूफी एंड कवालीज, आप इनके म्यूजिक स्टेशन जो है राहत फतेह अली खान नाम के वो आप चेकआउट करें. इट इज़ गोइंग टू गिव यू रियली नाइस सॉन्ग्स. तो ये म्यूजिक स्टेशन सुनना ना भूले. रोवा के जरिए आपको सुनने को मिलेगा. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. सुनते रहो हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.

0: Download Rover to listen Hum 80s Jukebox.
1: Good evening, हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल 100% वेजिटेरियन जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए टैंगी टिप्स बनाने के लिए पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए या बस सीधा टब से खाने के लिए क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस ऑलवेज देसी अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन कशिश नेचुरल योगर्ट.
2: Long weekends are made for saving at Briscoe's with massive 70% off dream big deals plus 20 to 70% off the entire store. Briscoe's is making all your dreams a reality. So hurry in Sunday. See online for T's and C's.
3: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
4: In Yucatan, the local Mexican surfers pronounce cero, cero. During the warm summer evenings in bars around the coast of Nayarit, you'll hear them say cero. In New Zealand, zero alcohol Corona cero is pronounced cero. Easy, eh? However you say it, Corona Cero will always be the smooth zero alcohol beer that's still served with a lime.

0: Radio Pub. You're listening to Krish.
1: Let's go!
2: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ ओकलैंड गेट रेडी फॉर अ नाइट ऑफ अनस्टॉपेबल लाफ्टर ट्राइविजन इवेंट्स प्रेजेंट्स द ग्रेट कॉमेडी नाइट फीचरिंग कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर ये दोनों लाइव ऑन स्टेज परफॉर्म करने के लिए आ रहे हैं डबल द कॉमेडियंस डबल द लाफ्टर वॉच टू ऑफ इंडियाज बिगेस्ट कॉमेडी स्टार्स एक साथ में ये परफॉर्म करेंगे फॉर वन अनफॉरगेटेबल इवनिंग इनका मैजिक ऑफ लाइव कॉमेडी एक्सपीरियंस कीजिए बियॉन्ड द टीवी स्क्रीन इनका लाफ आउट लाउड मोमेंट्स को एक्सपीरियंस कीजिए हिलेरियस स्टोरी सुनिए रेजर शार्प पंच लाइन्स भी सुनने का मौका मिलेगा हंसने का मौका मिलेगा और काफ़ी ऑडियंस इंटरेक्शन भी होगा इनके शो में तो ब्रिंग योर फैमिली एंड फ्रेंड्स फॉर द परफेक्ट नाइट आउट अनफॉरगेटेबल मेमोरीज क्रिएट करने के लिए आप आ जाइए और VIP टिकट्स बिक चुके हैं तो आप जल्दी से टिकट्स जो रह गए वो आप ले लें ओकलैंड इज बजिंग सो डोंट वेट अंटिल रिमेनिंग सीट्स डिसअपीयर आफ्टर पे ऑप्शन भी अवेलेबल है आप इजीली बुक कर पाएंगे अपने लिए सीट्स टिकट्स बहुत ही जल्दी से बिक रहे हैं ग्रैब योर टिकट्स नाउ एट bookmyevent.co.nz बिफोर दे आर गॉन 18th जुलाई को ये होने जा रहा है विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में होगा अगर आप 0800-004-866 पर कॉल करते हैं एंड इफ़ यू क्रैक अ जोक ऑन एयर इफ़ द RJ ऑन एयर लाफ्स आपको डबल पास मिल सकता है ओनली क्लीन ऑन एयर फ्रेंडली जोक्स होने चाहिए प्लीज़ तो आप ये कर सकते हैं फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे 6 AM to 6 PM के बीच और ऐसे ही आप जीत पाएंगे डबल पास हमारे साथ होकर मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ सुनते रहो हम

0: Yo.
1: Big Radio Pub. Aapka Moment. Krish ka Magic. Only on Hum.
2: रेडियो पब जारी है. अगले घंटे पर मिलते हैं विद मोर इन्फॉर्मेशन और ग्रेट म्यूजिक आपके लिए हम लेकर आएंगे. 11th जुलाई है तो जितने भी हमारे प्यारे लिसनर्स हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू सो मच. ऑनलाइन लिसनर्स आपको भी याद कर रहे हैं. अगला जो गाना है बहुत ही प्यारा है, आप ये एंजॉय करें श्रेया घोषाल की आवाज़ में.

0: खुश रहो एक्साइट।
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
2: Just because you own a business, it doesn't mean your life is split in two. Your personal life shows up in your business space, and business shows up in your personal space. At ASB, one banker handles both. Because you're one person, not two accounts. ASB, one step ahead.
3: Trivision Entertainment and Ashik Homes Limited, in association with Mega Finance, Mortgages and More, and Peace of Mind Insurance presents The Great Indian Comedy Night, featuring the Kapil Sharma Show stars, Krishna Abhishek and Rajiv Thakur live on stage.
4: Wow, wow, mashallah, kya baat hai, kitna acha dance karte. Tum Govinda ka kuch lagta hai kya?
3: Saturday, 18th July, 7 PM at Victory Convention Center. Book your tickets now at bookmyevent.co.nz.
4: Mashallah, bahut acha, very nice.
5: Oh no, we'll be late.
6: We'll be all right. I'll call the AA.
7: Award-winning road service. Just one of the many benefits of AA membership. With over 45 ways to save every day, it's the membership with more. Join us today at aa.co.nz.
8: Big Barrel, Big Barrel, you know, come look at store.
9: Big Barrel, big range, bigger deals. Single Peak Range, excluding Pinot Noir, $11.99. Mission Estate Wine Range, excluding Pinot Noir, $14.99. And Bottega Gold, White Gold, or Rhodes Gold Prosecco, $14.99. In-store or online.
10: Big Barrel, big range, bigger deals.
8: Big Barrel, you don't come to your store.
11: When City Rail Link arrives soon, it's going to give us all more time. From Panmure, you'll be able to go from instant noodles for one in the library to... Hey, hey! Noodles with friends on Karanga Hape Road! In just 23 minutes. Auckland Transport and City Rail Link. More connections that'll take you from a night in to a night out.
12: Rarotonga is on sale now at Flight Centre. Treat the family with 7 nights plus flights from $1,399 per person. Book online or in-store today. Departs open, fees, T's and C's apply. Flight Centre, your centre for travel.
13: Bollywood ka asli blockbuster.
14: Pure sheher pe kabza hoga, raaj hoga.
13: Playing Bollywood's biggest hits.
15: Yo.
13: Radio Pub. Moment. Krish ka magic. Only on Hum.
16: Welcome back everyone. Radio Pub mein main Krish aapka swagat karta hoon aur istiqbal karta hoon. स्वागत है आपका, क्योंकि इस घंटे पर भी आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे गाने मैं लेकर आया हूं जो आप बहुत एंजॉय करेंगे हमारे साथ होकर। इसके लिए बस आप हमें सुनते रहो, एंजॉय करते रहो आपके गाने, और आपके फेवरेट आर्टिस्ट्स के गाने भी हम लेकर आए हैं जो आपके लिए हम शामिल करेंगे इस घंटे पर। डिकोडिंग द गेम्स जो सेगमेंट है, जिस जो खेल के बारे में जानकारी है वो लेकर आएंगे हम आपको इस बार। व्हाट इज़ रग्बी, रग्बी पर जानकारी देंगे, बेसिक रूल्स क्या है, हाउ टीम्स को, कॉमन रग्बी टर्म्स क्या है, फन फैक्ट भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, वेलकम बैक टू द शो एवरीवन। प्यारे गाने और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। क्रिश के साथ है, गुड आफ्टरनून।

0: listening to Krish.
1: Let's go!
2: रेडियो पब आपके लिए जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। एक एक करके आपके फेवरेट सॉन्ग्स भी पेश करेंगे, लेकिन अभी डिकोडिंग द गेम पर बातें कर रहे हैं। रग्बी, व्हाट इज रग्बी? रग्बी यूनियन इज प्लेड बिटवीन टू टीम्स ऑफ 15 प्लेयर्स। ऑब्जेक्टिव है कि आप बॉल को कैरी करें, पास करें और किक करें द बॉल ओवर द अपोनेंट्स गोल लाइन टू स्कोर मोर पॉइंट्स। और ये जो खेल है, इसके बेसिक रूल्स ये है कि एक मैच लास्ट अबाउट 80 मिनट्स डिवाइडेड इनटू टू 40 मिनट हाफ्स। और ये बॉल को ओनली पास किया जा सकता है बैकवर्ड्स और साइडवाइज बाय हैंड, और प्लेयर्स में किक द बॉल फॉरवर्ड एट एनी टाइम। टैकलिंग अलाउड होता है बिलो द शोल्डर्स, और टैकल के बाद जो खेल है वो कंटिन्यू होता है थ्रू ए रक और ए मॉल। टीम्स कैसे स्कोर करते हैं इस पर जानकारी बहुत

डिकोडिंग द गेम पर बातें हो रही है रग्बी यूनियन के लिए, व्हाट इज रग्बी, हाउ टीम्स को एक ट्राई बनता है 5 points का, ग्राउंडिंग द बॉल ओवर द अपोनेंट्स गोल लाइन अगर हो जाता है तो 5 points मिलता है, उसके बाद कन्वर्जन मिलता है 2 points मिलते हैं, एक किक होता है आफ्टर स्कोरिंग अ ट्राई, पेनल्टी गोल होता है 3 points का अवॉर्डेड आफ्टर एक अपोनेंट कमिट्स ए पेनल्टी, और ड्रॉप गोल होता है 3 points का अगर एक सक्सेसफुल ड्रॉप किक ड्यूरिंग द ओपन प्ले होता है। कॉमन रग्बी टर्म्स पर बातें करेंगे बहुत ही जल्दी।

0: Ka Moment. Krish Ka Magic. Only on Hum.
1: रिकॉर्डिंग द गेम पर बातें हो रही है रेडियो पब में, जो एक बहुत ही अहम सेगमेंट होता है आपके लिए, जिसमें गेम के टर्म्स, रूल्स और स्कोरिंग कैसे होता है, क्या कुछ फन फैक्ट है उसके बारे में ये बताते हैं। तो कॉमन रग्बी टर्म्स, क्रम जो होता है, ये एक रीस्टार्ट होता है वेयर 8 प्लेयर्स फ्रॉम ईच टीम पुश फॉर पोजेशन। लाइन आउट का मतलब है कि प्लेयर्स कॉम्पीट करता है फॉर द बॉल आफ्टर इट गोज आउट ऑफ प्ले। रक का मतलब है प्लेयर्स कॉन्टेस्ट पोजेशन टैकल के बाद वाइल रिमेनिंग ऑन देयर फीट। नॉक ऑन का मतलब है कि एक्सीडेंटली ड्रॉपिंग और नॉकिंग द बॉल फॉरवर्ड। एडवांटेज एक और टर्म है जिसका मतलब है कि रेफरी अलाउज प्ले टू कंटिन्यू आफ्टर ए फाउल अगर नॉन ऑफेंडिंग टीम बेनिफिट करती है। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, एक फन फैक्ट भी हमारे पास है जो आपके साथ हम शेयर करेंगे बहुत ही जल्दी।

भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।

प्रोक्लेम तैयार हो जाओ एक सूफी रात के लिए. वंस अपॉन अ टाइम विद द लेजेंडरी राहत फतेह अली खान लाइव इन कॉन्सर्ट अलोंग विद शाहजमान अली खान सैटरडे 25 जुलाई एट द ट्रस्ट एरिना. बुक योर टिकट्स ऑन dryticket.co.nz. फॉर स्पॉन्सरशिप्स कॉल करम हुंडल ऑन 0275146477.

Yo. Radio Pub. You're listening to number one. हम playing Bollywood's biggest hits at Radio Pub जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. Interesting खबरें मैं आपके साथ share करता रहूँगा. बस इसके लिए आप हमारे साथ देते रहे 6 p.m. तक. मैं क्रिश आपके साथ दूंगा. Fun fact about rugby is New Zealand's All Blacks are famous for performing the traditional Maori haka before international matches. ये एक symbol of respect होता है, unity और challenge होता है. जो वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक ट्रेडिशंस इन वर्ल्ड स्पोर्ट में बन चुका है. एवरीवन लुक्स फॉरवर्ड टू इट. और ये जो परफॉर्मेंस है हर कोई लुक फॉरवर्ड करता है देखने के लिए. और ऐसे ही ये जो परफॉर्मेंस है बहुत फेमस भी हुआ है वर्ल्ड वाइड.

0: Radio Pub.
1: आप सुन रहे हैं आपके नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ ओकलैंड गेट रेडी फॉर अ नाइट ऑफ अनस्टॉपेबल लाफ्टर ट्राइविजन इवेंट्स प्रेजेंट्स द ग्रेट कॉमेडी नाइट फीचरिंग कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर ये दोनों लाइव ऑन स्टेज परफॉर्म करने के लिए आ रहे हैं डबल द कॉमेडियंस डबल द लाफ्टर वॉच टू ऑफ इंडियाज बिगेस्ट कॉमेडी स्टार्स एक साथ में ये परफॉर्म करेंगे फॉर वन अनफॉरगेटेबल इवनिंग इनका मैजिक ऑफ लाइव कॉमेडी एक्सपीरियंस कीजिए बियॉन्ड द टीवी स्क्रीन इनका लाफ आउट लाउड मोमेंट्स को एक्सपीरियंस कीजिए हिलेरियस स्टोरी सुनिए रेजर शार्प पंच लाइन्स भी सुनने का मौका मिलेगा हंसने का मौका मिलेगा और काफ़ी ऑडियंस इंटरेक्शन भी होगा इनके शो में तो ब्रिंग योर फैमिली एंड फ्रेंड्स फॉर द परफेक्ट नाइट आउट अनफॉरगेटेबल मेमोरीज क्रिएट करने के लिए आप आ जाइए और VIP टिकट्स बिक चुके हैं तो आप जल्दी से टिकट्स जो रह गए वो आप ले लें ओकलैंड इज बजिंग सो डोंट वेट अंटिल रिमेनिंग सीट्स डिसअपीयर आफ्टर पे ऑप्शन भी अवेलेबल है आप इजीली बुक कर पाएंगे अपने लिए सीट्स टिकट्स बहुत ही जल्दी से बिक रहे हैं ग्रैब योर टिकट्स नाउ एट bookmyevent.co.nz बिफोर दे आर गॉन 18th जुलाई को ये होने जा रहा है विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर में होगा अगर आप 0800-004-866 पर कॉल करते हैं एंड इफ़ यू क्रैक अ जोक ऑन एयर इफ़ दी आर जे ऑन एयर लाफ्स आपको डबल पास मिल सकता है ओनली क्लीन ऑन एयर फ्रेंडली जोक्स होने चाहिए प्लीज़ तो आप ये कर सकते हैं फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे 6 AM to 6 PM के बीच और ऐसे ही आप जीत पाएंगे डबल पास हमारे साथ होकर मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ सुनते रहो हम

You're listening to number one, I'm playing Bollywood's biggest hits. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ। कुछ सामाजिक सूचनाएं भी हमारे पास है जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। श्री राम मंदिर 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन की ओर से सूचना है कि अखंड रामायण पाठ यहाँ पर होने जा रहा है सैटरडे 1 और संडे 2 अगस्त को। सैटरडे को रोट पूजा होगा, आरती और रामायण पाठ भी होगा 8:45 AM। संडे को सुबह 10 बजे रामायण पाठ ख़त्म होगा, 10:30 AM हवन और आरती भी होगी। महाप्रसाद भी यहाँ पर आपको दिया जाएगा थ्रू आउट द प्रोग्राम। और भी जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 09-836-4647 पर। मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ, सुनते रहो हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।

You're listening to number one हम playing Bollywood's biggest hits क्रिश के साथ है. न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से एक बहुत ही शानदार अनाउंसमेंट है. श्री राम लीला आपके लिए आयोजित किया जा रहा है. स्टॉल इंक्वायरीज के लिए आप मास्टर अशोक से बातें कर सकते हैं 021-179-5459 पर. रामलीला एक डिवाइन थिएट्रिकल एक्सपीरियंस होने जा रहा है. सेव द डेट, ये डेट आपको मार्क करके रखना है. 8 अगस्त को होगा और भी डिटेल्स जो है बहुत ही जल्दी आपके साथ शेयर किया जाएगा. न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से ये सूचना आपके लिए है जो रामलीला लेकर आ रहे हैं आपके लिए ऑन 8 अगस्त. क्रिश के साथ है और भी प्यारे गाने आपके लिए हम पेश करते रहेंगे और भी इंटरेस्टिंग खबरें आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे.

0: Playing Bollywood's biggest hits.
1: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
2: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
3: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर.
4: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप. West side है ना, west side of Auckland है ये. We have lots of fun basically with the cold weather.
3: कौन है?
4: Hunua और Waitakere.
3: अच्छा Hunua west में.
4: किधर है Hunua?
1: The Breakfast Show with VJ and Pooja.

0: Yo.
1: Big Radio Pub. Aapka Moment. Krish ka Magic. Only on Hum.
2: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. ओकलैंड गेट रेडी. लेजेंडरी राहत फतेह अली खान ओकलैंड आ रहे हैं फॉर वन अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक. इनका मैजिक आप एक्सपीरियंस कीजिए ऑफ हिज टाइमलेस हिट्स, साउल स्टरिंग कवाली, पावरफुल वॉइस जो इनका होता है, जिन्होंने ऑडियंस को कैप्टिवेट किया है अक्रॉस द वर्ल्ड. इनके गाने इतने मज़ेदार होते हैं. ट्रस्ट अरिना में ये शो होने जा रहा है 25 जुलाई को. प्रेजेंटेड बाय जय के स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस और शहजादा प्रोडक्शन. आपके लिए टिकट्स आप dry.com से ले सकते हैं. राहत फतेह अली खान लाइव देखने का मौका है ऑन 25 जुलाई ट्रस्ट अरिना में. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. यू लिसनिंग टू नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.

0: जेट बीस को चाहते हो या ब्रीज, मोर, एज, रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी. बसेस, बिलबोर्ड, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड. कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स.
1: Tori and Ben didn't think they needed a DVS system.
2: We've got double glazing.
1: Have you still got that cold, damp feeling?
3: Yeah, we do.
1: So Tori and Ben got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work, making their rooms drier and healthier. Say no to that cold, damp feeling. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
4: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है.
5: हाँ, अच्छा
4: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस, साडा कुछ नहीं.
5: मिसेस सिंह,
6: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने.
7: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के.

0: Yo.
1: Big Radio Pub. Aapka Moment. Krish ka Magic. Only on Hum.
2: आप सुन रहे हैं आपका नंबर वन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट सुनते रहो और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ. फाइनल आवर है ये हमारे रेडियो पब का और जितने भी हमारे प्यारे लिसनर्स हमारा साथ देते आए हुए हैं ऑल द वे फ्रॉम मिडनाइट अप अंटिल नाउ, थैंक यू सो मच. इस घंटे पर भी आपको हमारा साथ देना है. बहुत मज़ेदार ये टाइम हमारे साथ हो रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपका साथ हमें मिल रहा है, विच हैज़ मेड दिस आफ्टरनून ग्रेट वन. तो इस घंटे पर भी आपके लिए कुछ और इंटरेस्टिंग खबरें लेकर आएंगे, खास तौर पर आपके लिए एंथम्स एंड प्रेडिक्शंस लेकर आएंगे, जिसमें इनफैक्ट एंथम्स एंड प्रेडिक्शंस नहीं लेकिन आपके लिए रहेगा मैच पॉइंट मेमोरी, जहाँ पर हम बात करेंगे या शेयर करेंगे अबाउट हिस्टोरिकल मैच विनिंग मोमेंट्स, जो शायद आपको याद होगा शायद याद नहीं होगा. तो ऐसे ही कुछ लेकर आएंगे आपके लिए इस घंटे पर भी. ये हमारा फाइनल आवा है और इसी घंटे पर हम पॉडकास्ट पर भी बातें करेंगे.

0: listening to Krish.
1: Let's go!
2: You're humming along with Krish on your number one hum playing Bollywood's biggest hits. AI सभी जगहों पर है तो हम podcast सुनना ना भूले क्योंकि इसमें रुजबे और सैंडी बहुत ही interesting बातें करते हैं with AI specialist दर्शित पांड्या. ये एक senior principal engineer है platform at Zerko and an AWS community builder जो बहुत ही बारीकी से breakdown करते हैं the world of artificial intelligence in a way that actually makes sense. चाहे ChatGPT हो या AI at work हो to job security, privacy concerns, opportunities या कोई भी skills that you need for the future, ये conversation ये सारे questions का जवाब देता है और discuss करता है इन मुद्दों को. चाहे आप excited हो, curious हो या फिर little nervous about AI, ये episode आपके लिए एक practical guide है to understand कि टेक्नोलॉजी किस दिशा में जा रही है और कैसे आप टेक्नोलॉजी के साथ साथ चल सकते हैं. तो AI is everywhere, लेकिन इसका क्या मतलब हमारे ज़िंदगी के लिए होता है, हमारे काम के लिए होता है, ये एपिसोड आप सुनना ना भूले. 5599 पर टेक्स्ट करें ड्राइव फॉर द फुल ऑडियो. इसके अलावा ब्रेकफास्ट कैचअप के लिए भी आप हमारे पास 5599 पर BF भेजे, जहां पर फ्यू बिट्स एंड कन्वर्सेशंस विद विजय एंड पूजा होता है फ्रॉम द ब्रेकफास्ट शो. तो हमारे पॉडकास्ट को आप सुने क्योंकि बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स आपके लिए यहां पर डिस्कस किया जाता है. मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूं.

0: जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए।
1: Playing Bollywood's biggest hits.
2: वो दिन जब मोहब्बत खत्म होती थी।
3: ये मैं

लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

Yo. Radio Pub. रेडियो पब जारी है और मैं क्रिश आपके साथ दे रहा हूँ फाइनल आवर. इट इज़ बातें हो रही है मैच पॉइंट मेमोरी के बारे में जो बहुत यादगार टाइम रह गया है या हुआ है एक मैच में. तो 2019 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल ये 14 जुलाई 2019 को खेला गया था एट लॉर्ड्स लंदन बिटवीन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड. बोथ टीम्स ने स्कोर किया था 241 runs लीडिंग टू ए ड्रामेटिक ट्राई आफ्टर 50 overs और ये मैच वेंट टू अ सुपर ओवर which also ended in a tie. So England were declared winners based on boundary count, winning their first World Cup. Or Ben

0: का मोमेंट, क्रिश का मैजिक, ओनली ऑन हम
1: रेडियो पब जारी है. ऑनलाइन लिसनर्स आपको भी शामिल करते हैं. आपके जन्मदिन है, वेरी हैप्पी बर्थडे टीम हम की ओर से, और हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी लॉन्ग लाइफ टू यू एंड मे गॉड ब्लेस यू. जितने भी हमारे लिसनर्स अभी रोबा के जरिए हमें सुन रहे हैं, ये स्पेशल विशेस आपके लिए भी है. जितने भी लोग अभी ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आपका भी जन्मदिन है, स्पेशल दिन है. वेरी हैप्पी बर्थडे आपको, टीम हम की ओर से बहुत सारी बधाइयाँ. कुछ ही देर तक और मैं आपके साथ दूंगा, 6 PM तक आपके लिए जारी रहेगा.

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Reliance Ventilation System.
2: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
1: Moisture और ventilation का problem लगता है.
2: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
1: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
3: Contact Reliance Ventilation System on 0800 787 111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.

0: Why switch to Tower? Get covered in minutes and enjoy 2 months on us when you buy new comprehensive car insurance online. Use promo code 2 months. T's and C's and eligibility criteria apply. Excludes GST and levies. Switch to Kiwi. Switch to Tower.
1: Please use your imagination for the following ad.
2: If I won Powerball, I'd build my dream. Then I'd even things out with a massive donation to...
3: Imagine winning $25 million this Saturday. Play in store or online.
4: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम और जब भी जरूरत हो दिन हो या रात हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए

0: Radio Pub.
1: रेडियो पब जारी है. इट इज़ लॉन्ग वीकेंड. 11th जुलाई आज है, सैटरडे है. तो आई एम श्योर बहुत अच्छा लग रहा होगा कि कल भी छुट्टी था, आज भी है और कल भी रहेगा. तो तीन दिनों की छुट्टी है. बहुत ही मज़ेदार ये दिन, ये वीक आपके लिए जा रहा होगा, यही उम्मीद करते हैं. और आई एम श्योर सैटरडे है तो पार्टी घर पर रखा गया होगा या कहीं पर जाने वाले हैं आप. कुछ प्लानिंग भी किया गया होगा कि क्या कुछ होगा. तो जो कुछ भी आप कर रहे हैं, सेफ रहे, रेस्पॉन्सिबल रहे और एन्जॉय करें, यही हम कहना चाहेंगे आपको.

0: Krishka moment. Krishka magic. Only on Hum.
1: रेडियो पब यहीं पर खत्म होता है दोस्तों. आपने हमारा साथ दिया, थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा लगा. अब हमारी मुलाकात होती है कल संडे नाइट को 6 PM टू मिडनाइट. आ जाएंगे आपका साथ देने के लिए. ये हफ्ता पूरे सातों दिन मैं आपका साथ दे रहा था और थैंक यू सो मच. आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपका भी साथ हमें मिला और बहुत ही इन्जॉयबल एक्सपीरियंस बना है. हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ योर सैटरडे, एन्जॉय योर नाइट और कल का दिन भी एन्जॉय करें. शाम को मुलाकात होती है. गुड नाइट, गुड इवनिंग एवरीवन.

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: Reliance Ventilation System.
2: Hi, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
1: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
2: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
1: Oh, that's not good. हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
3: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111. रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
4: Long weekends are made for saving at Briscoe's with massive 70% off dream big deals plus 20 to 70% off the entire store. Briscoe's is making all your dreams a reality. So hurry in Sunday. See online for T's and C's.
5: Cancer touches almost all of us in some way. This Feel Better Month at Farmers, buy a participating beauty product or make a donation in store. At a time when cancer can leave people feeling overwhelmed and uncertain, you're helping provide practical support. Support Feel Better Month at Farmers.
6: In Yucatan, the local Mexican surfers pronounce cero, cero. During the warm summer evenings in bars around the coast of Nayarit, you'll hear them say, cero. In New Zealand, zero alcohol Corona cero is pronounced cero. Easy, eh? However you say it, Corona cero will always be the smooth zero alcohol beer that's still served with a lime.
7: Non-stop Bollywood.
8: Hum.
7: Playing Bollywood's biggest hits. ये है सैटरडे बॉलीवुड बज।

0: हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
1: The Breakfast Show with VJ and Pooja.
2: पूरी प्लानिंग से आए हैं, 100% तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
3: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
4: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, West side of Auckland है ये। I have lots of fun basically with the cold weather.
3: कौन है?
4: Hunua और Waitakere।
3: अच्छा Hunua West में?
4: किधर है Hunua?
1: The Breakfast Show with VJ and Pooja.

चाहे आप हम के ढिंचैक बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

rock and roll. Download Rover to listen Hum 80s Jukebox.

0: मेरे को देख के हंस रही थी ना, अच्छा लगा ना मैं?
1: तू क्यों अच्छा लगेगा?
0: तो फिर मेरे को देख के हंस क्यों रही थी?
1: मैं तुझे देख नहीं रही थी, इसलिए तू कौरा बौरा हो रहा था ना।

0: Bollywood.
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
0: हम playing Bollywood's biggest hits.
2: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन. प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी. हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म. डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन.
3: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
4: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
3: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
4: Available at selected branches. T's and C's apply.
0: DJ Mix, only on Hum.

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: हाँ, वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
2: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year Master Builder Guarantee, awards pour in.
3: And award goes to Indelible Homes.
2: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite Master Builder.
0: Kahani of Indelible Homes.
4: I wanna see the DJ mix only on Hum.

0: Unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram-friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं.
0: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.

0: driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया भी हाँ किसने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिलजीत हो?
2: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
4: Trade Depot celebrates Matariki this week with two exceptional deals. Huge Vogue side-by-side fridge freezers, just $5.99. 7-star heat pump dryers, just $4.99. Shop online or in store at Trade Depot, Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.
5: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो, बोली बस मेरा फोकस है। हाँ, अच्छा बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
6: मिसेस सिंह।
7: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
8: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहुहु। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
9: इमेजिन यू आर स्नोबोर्डर लुकिंग डाउन अ माउंटेन, जीरो क्राउड्स, जीरो नॉइस, जीरो विंड, जीरो आइस, and zero things to worry about. It's just you, your fellow compadres, and at the end of the run, an ice cold Cero by Corona. Corona Cero, zero alcohol, served everywhere this winter with a lime.
10: The DJ Mix, only on Hum.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। We have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
4: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels everyone, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsworth, Monaco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: Weekdays 6 to 10 a.m. Non-stop Bollywood.
5: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
0: हम playing Bollywood's biggest hits.

0: ग्रीन चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वी हैव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो या आप फ्यूचर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो, स्मार्ट चॉइस अब सिंपल है। वे सिटी GWM हैवल, हैवल का हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड रेंज पे डिस्काउंट्स और सिर्फ 4.95% फाइनेंस ऑफर्स। आज ही वे सिटी ऑटो ग्रुप पहुँचे और जिमी टेलर और उनकी टीम से मिले। लिमिटेड टाइम ऑफर, टीज एंड सीज अप्लाई। फॉर मोर इन्फो विजिट वे सिटी ऑटो ग्रुप .nz और सर्च फॉर वे सिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल्स।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: स्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: शादी कर सकते हैं
3: क्वीन विक्टोरिया की
2: तरह क्वीन विक्टोरिया की तरह कैसे दिख सकती हैं आप तो वैसे ही लगेंगी मलिका तिलफरेब

rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.

subscription. हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन। Playing Bollywood's biggest hit.

Yo, honey singer. चलती रहेगी आज सारी रात दारू, तुम बोतलें तैयार कर लो, पीने के लिए कोई वार नहीं होता, तुम मेरा या

0: खत्म।
1: नाइट फ्लाइट ऑन हम।
2: कीप काम बिकॉज पंजाबी स्वैग इज ऑन।
3: माजे लिए मोमबत्ती है, पहले दिनों तेरे उत्ते आँख रखिए, तेरे बिना एरिए च और कुड़ी दा ना दल मंगिए ते न।

0: radio.
1: Streaming on Rover.
2: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद. Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes. बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला, रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं. तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए. शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए.
3: आपके सामने एक रेड बटन है,
4: दबा दिया,
3: नहीं दबाना.
5: द मैडनेस इज बैक, धमाल 4.
6: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा.
5: स्टारिंग अजय देवगन, अर्शद वारसी, रितेश देशमुख एंड जावेद जाफरी. रिटर्न इन धमाल 4, डायरेक्टेड बाय इंदिरा कुमार.
7: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी.
5: वॉच द बिगेस्ट फैमिली एंटरटेनर धमाल 4 इन सिनेमाज नाउ.
8: पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता.

दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।

0: Sandy and Rusby. क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के.
1: राजा मंत्री चोर सिपाही सब यहाँ थे.
0: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट.

0: driving you home? The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया, अभी यहाँ भी किसने बनाया, वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिलजीत हो?
2: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
4: Playing Bollywood's biggest hits.
5: Budget gaane.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। We have lots of fun basically with the cold weather.
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा, Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsworth, Manuko. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
0: Weekdays, 6 to 10 a.m. A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111. Indelible Homes, your building expert.
5: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
6: हाँ। अच्छा,
5: बताओ तुम्हारा फोकस? फोकस साडा कुछ नहीं।
6: मिसेस सिंह,
7: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन।

0: RNZ.
1: बॉलीवुड के सबसे बड़े हिट गाने हम
2: तेरी बेस है फाड़ू मेरी हाइज के लिए हम
3: नथिंग ना ना ना ना नथिंग ना किंतु कुछ द थिंग

चाहे आप हम के दिन चैट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।

वस्त्र नहीं, अपना मन ही फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। यदि आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने हृदय को

आपकी महान करुणा के लिए धन्यवाद। इन श्रोता मित्र के लिए हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा इनके हृदय में एक नई उमंग भर दो, आपके आनंद को अपने में ये भरपूरी से पाए, आपके आश्चर्य कर्म करने वाले हाथों में हम इन्हें सौंपते हैं। इनके दिल में जो बोझ है, जिस समस्या का ये सामना कर रहे हैं, उस पर इन्हें विजय बनाओ। इनके आत्मिक जीवन में, परिवार में, व्यवसाय में और जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु हम आपकी शांति को घोषित करते हैं। अविश्वास या निराशा लाने वाली, आशीषों को रोकने वाली तमाम दुष्ट शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम बांधते हैं। प्रतिदिन ये आपकी अनंत आशा में बढ़ते जाए यीशु के नाम में।

लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑकलैंड. स्वागत है आपका यहाँ हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स पे. मैं रक्षा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आपका और मेरा जो सफ़रनामा है ये चलने वाला है अगले 6 घंटे. करेंगे हम बहुत सारी बातें और प्यारे प्यारे गाने आपके लिए बैक टू बैक.

सो एक बहुत ही ऐतिहासिक विजिट जो है इट हैज़ कम टू एन एंड, जहाँ पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है ये न्यूजीलैंड अपने 3 दिन के दौरे पर निकले थे. पहले इंडोनेशिया गए, फिर मेलबर्न गए एंड फाइनल टच डाउन वॉज इन ऑकलैंड, जहाँ पर हमारे न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने जाके उनको स्पेसिफिकली वेलकम किया एट द एयरपोर्ट. बहुत ही प्यारा सा माहौल यहाँ पर एक क्रिएट हुआ, लुकिंग एट हाउ रिस्पेक्टफुली पीपल डिड वेलकम नरेंद्र मोदी इनटू न्यूजीलैंड. एंड ऑफ कोर्स देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि पीछे एंड द बैकग्राउंड ऑलरेडी चल रहा था, जैसे हमारा ट्रेड डील है एंड देन ऑफ कोर्स वी आर ऑल्सो लुकिंग इनटू अ डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम हियर टू इंडिया. बहुत सारी चीज़ें थी जिसके अराउंड भी बातचीत हुई है. क्या क्या ये है थोड़ा बहुत डिटेल्स मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, बट क्या आप उनमें से एक थे जिन्होंने जाकर खुद नरेंद्र मोदी को देखा, उनके स्पार्क एरिना में देखा या फिर एयरपोर्ट पे देखा या कहीं भी देखा, भाई कैसा फील कर रहे थे आप? व्हाट वाज दैट वाई, व्हाट वाज दैट फीलिंग? आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं 5599 पर.

0: discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
1: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
0: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-4626-26 today.
1: Available at selected branches. T's and C's apply.
2: Cancer touches almost all of us in some way. This Feel Better Month at Farmers, you can help. When you buy a participating beauty product or make a donation in store, you're helping provide free, practical support for people affected by cancer. At a time when cancer can leave people feeling overwhelmed and uncertain, that support can make a real difference. Cancer Support New Zealand helps people manage the everyday effects of cancer through practical sessions, expert support and trusted resources. Support Feel Better Month at Farmers.
3: आपके सामने एक रेड बटन है.
4: दबा दिया.
3: नहीं दबाना.
5: The madness is back. धमाल 4.
6: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा.
5: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jafri. Return in Dhamaal 4. Directed by Indra Kumar.
7: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी.
5: Watch the biggest family entertainer Dhamaal 4 in cinemas now.
8: पता नहीं ऐसे dangerous situation में मैं automatically आगे कैसे आ जाता.
9: Everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 4499 to make a $3 donation now. Proudly supported by the MediaWorks Foundation.
10: Now's the time to book your next tour with House of Travel. Save $500 per couple on Globus small group tours to Japan, Vietnam, South Africa and more. See the very best of every destination without the stress. Talk to our team today only at House of Travel. T&Cs apply.
11: Chill, sip, smile.
12: This is Sunday Breakfast.
13: So this is the long weekend जिसका आज आखिरी दिन है. आखिरी है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है. अभी तो सिर्फ सुबह सुबह सवेरे अच्छा सा ब्यूटीफुल सा मॉर्निंग है. बिकॉज ओ माई गॉड क्या प्यारा सा मौसम रहा है इस लॉन्ग वीकेंड को. आई डोंट थिंक कि ऐसा हमारे साथ बहुत लंबे टाइम में हुआ होगा कि अगर हम दो तीन दिन छुट्टी पर हैं लगातार थ्रू आउट मौसम जो है इतना वाइब्रेंट इतना इनवाइटिंग रहा होगा. इट वॉज सो गुड टू जस्ट लाइक ड्राइव अराउंड इन ऑकलैंड दिस वीकेंड. मुझे बहुत मज़ा आया. मुझे आउट एंड अबाउट रहना इस वीकेंड बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. आई थिंक दैट हैज़ ऑलरेडी

बनी पीर से है रखे जो घूटो से बनी मेरी ना किसी इंसान से बनी बनी तो बस कब्रिस्तान के भूतों से बनी मैं कभी बहुत ज्यादा सैड कभी बहुत ही फनी मेरे गोयाट के बैक कानों में टिफनी मेरे और जीत के बीच कोई बट इफनी कोई टिप्पणी पे ना करूं टिप्पणी तेरे जैसे कहां से मैं आंट चाटता है तू मैं ऊपर वाले से ब्रह्मांड मांगता फिर कभी कैसी तो कभी ज्ञान बांटता फिर जो भी चलता है उसको भी फाड़ता फिरूं हिट पे हिट मैं मारता फिरूं दिन रात लगातार मैं जागता फिरूं भोलेनाथ के साथ मेरी बनती है सही उसे नचाने का शौक है मैं नाचता फिरूं।

हमें डूबने का शौक था, उसे बचाना आता था। हमें मचने का शौक था, उसे मचाना आता था। जोड़ी क्या ही खतरनाक थी हमारी, कि हमें नाचने का शौक था, उसे नचाना आता था।

अदनान सामी की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गाना फ्रॉम द मूवी साथिया, जो कि मेरी बहुत फेवरेट मूवी है. द एक्टर्स इन दैट मूवी आर वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट. आई मीन मूवी मेरी बहुत फेवरेट है, एक्टर्स बहुत फेवरेट है, सारे गाने मेरे बहुत फेवरेट हैं और उस पर टॉप नॉच अदनान सामी जी जो है ये भी मेरे बड़े फेवरेट हैं. तो देर वॉज अ टाइम जब अदनान सामी आए थे बॉलीवुड में, लिफ्ट करा दे इनकी पहली सॉन्ग थी जो कि सुपर डुपर हिट हुई थी. बॉडी शेमिंग का एक फेस था जिसके थ्रू ये गए एंड उस टाइम पे इनकी पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी कुछ हुआ है. एंड ऑफकोर्स आपको पता है देश दुनिया तो चीज़ें ढूंढती हैं कमेंट करने के लिए. तो अदनान के ऊपर बहुत ही लाइक उस टाइम पर एक ट्रेंड था इनके ऊपर मीम्स बनने का. चलो अभी अब दीज डेज देर इज़ अ ट्रेंड कि हर चीज़ पे मीम बन जाता है, बट उस टाइम पे अदनान सामी पे लोग मीम बनाया करते थे. आपको पता होगा शायद रोटी वाला मीम की एक रेस्टोरेंट में जब ये गए तो कुछ कोई 100 रोटी लेकर आया वेटर, और फिर अदनान ने बोला नहीं नहीं मैं इतना थोड़ा ना खाऊंगा, ऊपर से 2 रोटी हटा ले. तो ये उस ज़माने की बातें हैं. लेकिन ओ माय गॉड, अदनान ने जो है इन चीज़ों को पॉजिटिवली लिया. इन्होंने ऐसा कुछ लैश आउट नहीं किया ऑडियंस के ऊपर. एंड देन ही ऑल्सो वेंट थ्रू मैं कहूँगी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी विच इज़ नॉट ओनली फिजिकली, जहाँ पर ऑफकोर्स ही सो गुड लुकिंग, ही लुक सो नाइस, इज़ लॉस्ट सो मच वेट, बट ऑल्सो यू नो mentally that's very important. And I think rather than mocking people we should support people. Not everyone takes things kuch log bura maan jate hain aur shayad wo unki mental health ko kafi hurt karta hoga. Waise aapka kya kehna hai, agar aap apni life mein kabhi ek transformation journey ke through gaye hoge, aap yahan pe discuss kar sakte ho ki aapne kya mushkil tha, kaise aap usse bahar aaye, taki hum sab yahan pe jo hai aur hamari pyari jo janta hai ye thoda motivation le, a Sunday morning motivation only on Hum Playing Bollywood's Biggest Hits.

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: आपके सामने एक रेड बटन है
2: दबा दिया।
1: नहीं दबाना था।
3: The madness is back, धमाल 4।
4: गुलाबी साड़ी में तू लग रहा।
3: Starring Ajay Devgan, Arshad Warsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jafri. Return in धमाल 4, directed by Indra Kumar.
5: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी?
3: Watch the biggest family entertainer, धमाल 4, in cinemas now.
6: पता नहीं ऐसे dangerous situation में automatically आगे कैसे आ जाता।
7: Big Save's massive stock liquidation sale is on today. We're overloaded with stock, so today we're clearing out $20 million worth of furniture and beds with massive savings and deals store-wide. Save hundreds on sofas, sofas from $7.99, queen beds from $8.99. Get huge clearance deals on bunks, dining suites, recliners and bedroom furniture. Plus, tomorrow's the last day to get 50 months interest-free. T's, C's and credit criteria apply. Everything must go, only at Big Save.

पॉडकास्ट के हमारे नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं सैंडी एंड रुजबे, जो कि मैं ऑलरेडी सुन चुकी हूँ एंड आई थिंक आई फील क्वाइट एनलाइटेंड बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे पता नहीं थी बिफोर आई लिसन टू दिस पॉडकास्ट। यहाँ पर AI स्पेशलिस्ट दर्शित पांड्या जो हैं ये बात कर रहे हैं एवरीथिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या है ये, क्या इंस्टॉल्ड है, फ्यूचर, हम इसके ऊपर कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, कितना हमें डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए, यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट एंड क्यूरियोसिटी अराउंड दिस टॉपिक। तो टाइप करें ड्राइव और इसे भेज दें 5599 पर।

0: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
1: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
0: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
1: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
0: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
2: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 ईयर्स।
3: Have you heard? It's your final day to shop Briscoe's for massive 70% off dream big deals, plus 20 to 70% off the entire store. The days are cold, but the savings are hot. Dream shop save for one final day at Briscoe's. See online for T's and C's.
4: Before you can vote, you need to be enrolled. We're making it easy, with Electoral Commission teams popping up at events and venues across Aotearoa New Zealand, so you can enrol, check or update your details without any fuss. Find out where our teams will be at vote.nz.
5: Stuck for dinner ideas? Faro Kitchen has you covered with fresh, chef-created meals that are ready in no time. Feed the family with classic lasagna, silky pasta, rich ragu and cheesy bechamel, or classic smoked fish pie, tender, flaky fish, buttery bechamel and a golden kumara mash. Faro Kitchen's oven-ready meals make wholesome dinners quick and stress-free. Available online or at your local Faro store. Just pop it in the oven and relax. Faro Kitchen, dinner made deliciously easy.
6: Keep calm because Punjabi swag is on.

स्वागत है आपका, वेलकम बैक। हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स पे, मैं रक्षा आज आपके लिए लेकर आई हूँ अब बहुत ही प्यारा सुनहरा सा ब्रेकफास्ट शो, क्योंकि मौसम बहुत सुहाना है। इट्स द लॉन्ग वीकेंड, काफ़ी रिलैक्सिंग रहा होगा आपके लिए और मेरे लिए डेफिनेटली है। साथ में बहुत ही वी लुक्ड फॉरवर्ड टू पीएम नरेंद्र मोदीज़ विजिट आफ्टर लाइक 40 ईयर्स। जो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर आए थे, जिसके अराउंड भी काफ़ी हश हश हियर एंड देयर थिंग्स थी। बेन ओवरऑल न्यूजीलैंड हैज़ बीन, न्यूजीलैंड एंड इंडिया बोथ हैव बेनिफिटेड। सो एक अच्छा वीकेंड हम सब के लिए ओवरऑल, बिकॉज न्यूजीलैंड इज़ गोइंग थ्रू अ फेज जहाँ पर इकोनॉमिकली हम इतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, जिसके बारे में बातचीत करेंगे। थोड़ा क्या भाव चल रहा है मार्केट में सब्जी भाजी का, कितना ज़्यादा खर्चा हो रहा है। साथ में प्यारे प्यारे गाने मौसम के बारे में, स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है ये भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। और साथ में आप यहाँ पर अपने मैसेजेस भी मुझे भेजते रहें 5599 पर।

सो बॉलीवुड में ऐसी काफ़ी सारी मूवीज हैं जहाँ पर इवन नॉट इन ओनली इन बॉलीवुड बट ऑल्सो इन साउथ की फिल्म इंडस्ट्री लाइक इन इंडिया जैसे तमिल तेलुगु मलयालम जहाँ पर भी बहुत सारी मूवी बहुत टाइम से न्यूजीलैंड में शूट की जा रही थी बट जो सुपर डुपर हिट टैग है वो एक ही दो को आया जैसे कहूँ ना प्यार है वहाँ से लोगों को पता चला बैक इन दोज डेज कि भाई ये मूवी न्यूजीलैंड में शूट हुई है क्वींस टाउन में इसका ये पार्ट शूट हुआ है या वेलिंगटन में ये पार्ट शूट हुआ है बट बैक इन दोज डेज शोल्जर मूवी जो है इसका भी बहुत सारा पार्ट ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में शूट हुआ है इफ़ यू हैव सीन दिस मूवी प्रीति जिंटा है अलॉन्ग विद बॉबी देओल बहुत ही प्यारी सी मूवी है बहुत अच्छे अच्छे लाइक क्वर्की गाने हैं इसमें लाइक रोमांटिक एंड प्लेफुल गाने हैं इसमें जिसका अगर आप बैकग्राउंड ध्यान से देखो इट शोज़ आर ब्यूटिफुल न्यूजीलैंड बिहाइंड तो आजकल तो मैं कभी कभार ऐसे रैंडम खाना वाना खाते हुए यू नो आई वांट टू लिसन टू सम नाइस रोमांटिक बॉलीवुड सॉन्ग तो मैं यही देखती रहती हूँ और फिर जाके अपनी आंखों से देखने की जगह आई कैन एटलीस्ट अफोर्ड लाइक वॉचिंग ऑन द टेलीविजन आपका क्या कहना है

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
2: हाँ। अच्छा
1: बताओ, तो आड़ा फोकस फोकस साड़ा कुछ नहीं।
2: मिसेस सिंह का
3: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
4: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
5: Hi there, sorry to interrupt, but we know someone who is perfect for you. They're kind and warm, interesting and fun. They love kids and animals, sports and culture, food and fashion. They've got so much going for them. So can we set you up with them? They're called Auckland, and we think you'll really hit it off.
6: Neighbourly News, local stories for you to love where you live. Search Neighbourly News today.
7: Brewing good vibes, Sunday style.
8: Sunday breakfast on Hum.
9: New Zealand Carrom Association आपको invite करता है to the 4th New Zealand National Carrom Tournament on the 22nd and 23rd of August at Birkenhead Scouts Hall. Now this thing is bringing me back so many memories of the past. In fact, अभी last I went to this trip जहाँ पर मैं अपने दोस्तों के साथ South Island गई थी, and to the surprise, one of us actually brought a carrom board. और बहुत दिनों के बाद मैंने अपने दोस्तों के साथ carrom खेला, and oh my god, इनिशियली तो ये था कि चलो कुछ खेल रहे हैं, टाइम पास हो रहा है एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, बट आफ्टर सम टाइम इट बिकेम हाईली कॉम्पिटिटिव एंड मैं क्या बोलूँ, आई थिंक इट वॉज अमेजिंग। आई हैव ब्यूटिफुल मेमरीज ऑफ दैट पर्टिकुलर डे एंड ऑल्सो लाइक ग्रोइंग अप, कब जब हम कैरम खेलते थे। और भाई मैंने तो अपने भाई से बहुत लड़ाइयाँ करी हैं कैरम के दौरान, बट यहाँ पर अगर आप कैरम खेलना पसंद करते हैं, सो प्लेयर्स ऑफ ऑल स्किल लेवल्स आर वेलकम टू पार्टिसिपेट। रजिस्ट्रेशन एंड अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन फेसबुक का पेज, या फिर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं NZCA प्रेसिडेंट पंकज मोगा को ऑन 02109085067। इसका जो वेन्यू है, इट्स वैदिक सेंटर पापा टोईटोई, 7:30 PM टिल नेट, नहीं, इसका वेन्यू जो है वो है बर्केनहेड स्काउट्स हॉल, पापा टोटोई में दूसरा इवेंट है, उसके बारे में मैं बातें करूंगी। लेकिन 22 और 23 अगस्त को वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बर्केनहेड स्काउट्स हॉल में होने वाला 4th न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट, ओनली फॉर यू।

देखते हैं कम्युनिटी में क्या चल रहा है हमारे. सो 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन श्री राम मंदिर में अखंड रामायण पाठ जो है ये किया जाएगा ऑन सैटरडे द 1st of August as well as Sunday the 2nd of August. तो अगर आप सैटरडे संडे में जिस दिन भी फ्री हैं और अगर आप इस पाठ में जाके शामिल होना चाहते हैं, आपके पास वो स्पेस और टाइम रहे, तो शनिवार का कुछ ऐसा है, 7 बजे पूजा होगी, 8:15 बजे 8:15 पे आरती होगी और 8:45 8:45 पे रामायण पाठ जो है इसकी शुरुआत की जाएगी. संडे को 10 बजे रामायण पाठ जो है ये समाप्त होगा एंड देन 10:30 बजे हवन एंड आरती होगा. सो जिस भी समय आपको आपके पास टाइम हो आप ज़रूर जाके इस पाठ में शामिल हो सकते हैं एट 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन श्री राम मंदिर. महाप्रसाद जो है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध किया गया है. रजिस्टर करने के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 09836 4647 पर.

0: संडे ब्रेकफास्ट।
1: साथ ही में 8 अगस्त का जो डेट है इसको आप सेव कर लें, रामलीला जो है वो आपके लिए लेकर आने वाले हैं न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चरल चैरिटेबल ट्रस्ट। मास्टर अशोक को आप कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर मोर इंक्वायरीज ऑन 0211795459।

स्वागत है आपका, वेलकम बैक। हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स पे मैं रक्षा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आपका और मेरा जो सफ़र नामा है वो चलने वाला है आज दोपहर 12 बजे तक, 4 घंटे मैं और आप करेंगे बहुत सारी बातें। देश दुनिया में क्या चल रहा है, मोदी जी आए मोदी जी चले गए, क्या हुआ कल के पूरे दिन, 24 घंटे में बहुत कुछ हो गया न्यूजीलैंड में, ऑकलैंड में स्पेसिफिकली, इसके बारे में और भी बातें मैं लेकर आऊँगी। ये जो विज़िट है इससे न्यूजीलैंड को कहाँ पर फ़ायदा हो रहा है, इंडिया को कहाँ पर फ़ायदा हो रहा है, ये जो फ्रेंडशिप है इससे आगे क्या प्रोस्पेरिटी आने वाली है दोनों नेशंस में, लोगों के बीच में, इसके बारे में बातें करेंगे। देखेंगे मौसम कैसा आगे आने वाले में वीक पर, और साथ में मेरी एक बहुत ही फेवरेट सिंगर है हु ऑल्सो गॉट इंगेज्ड, तो ये जो इंगेजमेंट है ये उनके शो में उन्होंने अनाउंस करी है एंड आई एम वेरी श्योर अभी तक आपको नहीं पता होगा, तो ये जो गॉसिप है हियर एंड देयर फ्रॉम द बिज़ टाउन ये भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। मेरा नाम है रक्षा।

सो जैस्मिन सैंडलेस के बड़े अच्छे दिन चल रहे हैं. वो कहा जाता है कि कभी कभी लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है, एक ऐसा फेज आता है. दिस इज इवन सेड इन जनरल टर्म्स, सेड इन टर्म्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, या फिर बस हो जाता है कभी कभी जब हर चीज़ ही अचानक से अच्छी होनी शुरू हो जाती है. नाउ जैस्मिन सैंडलेस एक ऐसी सिंगर हैं जो बहुत टाइम से काफ़ी अच्छा वर्क पिच इन कर रही थी. मैं इनका वर्क आई थिंक पिछले 15 साल से ऑब्जर्व कर रही हूँ, जब हम पार्टीज करते थे और इनके ही गाने चला करते थे. एंड आई यूज़ टू लव हर. मुझे इनका ऑरा, इनका कॉन्फिडेंस, इनकी ट्रांसपेरेंसी बहुत हमेशा से पसंद आई एज एन आर्टिस्ट. लेकिन आई थिंक मेजरली लोगों ने इनको बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में तब जाना जब ये धुरंधर मूवी में आई, विच इज़ अ क्लासिक. और वहाँ से बस इट्स ओनली अप अप एंड अप फॉर जैस्मिन. बट यहाँ पर देर इज़ अनदर थिंग विच आई वॉन्ट टू ऐड, दैट भैया फ़ैन तो मैं इनका बहुत टाइम से रही हूँ, लेकिन आज मैं इनके लिए बड़ी खुश हूँ बिकॉज जैस्मिन इज़ नाउ इंगेज्ड एंड शी इंट्रोड्यूस्ड हर फियांसे ऑन स्टेज. इन्होंने अपने इवेंट के दौरान अपने फियांसे को लेकर आई एंड लाइक आई हैव दिस वीडियो इन फ्रंट ऑफ मी इन विच शी इज़ डांसिंग एंड आई कैन टोटली सी द हैप्पीनेस इन हर हार्ट. सो ऑल द वेरी बेस्ट, वेरी हैप्पी फॉर जैस्मिन. इसके अलावा टेलर स्विफ्ट गॉट मैरिड after Dua Lipa. So a lot of great singers and someone's वो सिंगर्स जिनकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, सब इधर उधर अभी निकल रहे हैं. Everyone is happy, everyone is prospering, and that's all we want. वी वॉन्ट. यहाँ पर और भी बहुत सारी बातें और प्यारे प्यारे गाने आपके लिए back to back.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
4: brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsaras, Manuko. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: Weekdays 6 to 10 a.m.
5: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
6: Why switch to Tower? Get covered in minutes and enjoy 2 months on us when you buy new comprehensive car insurance online. Use promo code 2 months. T's and C's and eligibility criteria apply. Excludes GST and levies. Switch to Kiwi, switch to Tower.
7: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
8: हाँ। अच्छा
7: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
8: मिसेस सिंह,
9: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
10: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
0: Chill, sip, smile.
11: This is Sunday breakfast.
12: वीकेंड जो है काफी इवेंटफुल रहा, बिकॉज अब आप जानते हैं क्यों रहा। लेट मी स्टार्ट। सो पहले तो हमने माता रिकी सेलिब्रेट किया हियर एंड देयर, बहुत प्यारे प्यारे इवेंट्स हुए, विच वाज अमेजिंग। माता रिकी के चक्कर में एक दिन एक्स्ट्रा छुट्टी मिलती है हमें, तो मैक्सिमम लोग तो ऑकलैंड से बाहर निकल गए हैं। दे आर लाइक कोई टापो में, कोई रोटोरुआ में है, आधी जनता क्वींसटाउन में एज यूजुअल बर्फ देख रही है एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, और एस्थेटिक फोटोज एंड पिक्चर्स एंड ये सब तो चल ही रहा है। इसके अलावा व्हाट हैपेंड ओवर द वीकेंड वाज इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं, ये न्यूजीलैंड आए थे, एंड इन द लास्ट 40 years दिस वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन दिस कंट्री। मोदी पहले भी आए हैं लेकिन नॉट एज अ प्राइम मिनिस्टर, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो एक उन्होंने अपनी स्पीच में बोला कि लास्ट टाइम जब वो आए थे उनको 3 gifts दी गई थी यहाँ से वापस जाते वक्त, उसमें से एक बहुत अच्छा सा मोफलर था, स्टोल था, जो इस बार वो वापस लेकर आए, उन्होंने पहना हुआ था, विच आई रियली लाइक कि भाई क्या अच्छा बेस स्टैब्लिश करते हैं मोदी जी बातें करने का। एनीवेज द ऑरा वाज सो गोटेड, जहाँ पर भी वो 25 गाड़ी रोटेट हो रही थी इन ऑकलैंड, पीपल वर लाइक कौन आ गया भाई, क्या हो क्या रहा है। हर तरफ पुलिस खड़ी थी, ईच एंड एवरी वेयर, मतलब पुलिस ऐसे लाइन से खड़ी थी, ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या ही होने जा रहा है। और साथ में इंस्पार्क एरिना किया और मोदी के लिए अराउंड 12,000 पीपल, अ फुल पैक्ड अप इवेंट, मतलब लोग मोदी मोदी मोदी कहते हुए थक नहीं रहे थे। इनफैक्ट इवेंट थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ, बट एवरीवन वो जोश जो था वो पूरा भरपूर बरकरार उधर था। बट मोर देन मोदी, आई बी वेरी ऑनेस्ट, आई रियली लाइक द ओपनिंग स्पीच बाय क्रिस्टोफर लक्सन, हमारे न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत एंथुजियाज्म के साथ उन्होंने स्पीच को स्टार्ट किया, एंड द वे ही वॉज कंडक्टिंग दैट स्पीच वॉज एक्सट्रीमली फ्रेंडली, मोर देन बींग डिप्लोमैटिक, और वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे पता नहीं क्यों पहली बार लाइफ में

ऐसा कोई नहीं होगा अपनी जिंदगी में जिसने कभी अपने आप से ऐसे बातें नहीं करी होगी, ये बोलकर कि यार मैं ऐसी क्यों हूँ या मैं ऐसा क्यों हूँ। वेल आई थिंक हियर एंड देयर क्वेश्चनिंग योर सेल्फ कि भाई ऐसा क्यों हूँ, या फिर टेलिंग योर सेल्फ आफ्टर एन एज क्वेश्चनिंग बंद हो जाता है। आई थिंक यू स्टार्ट टेलिंग योर सेल्फ यार मैं ऐसा क्यों हूँ या मैं ऐसी क्यों हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको आदत है, योर अ स्वीट टूथ एंड आपको आदत है कि रात में आप खाने के बाद कुछ मीठा जो हेल्दी नहीं हो खा के सोते हो, या बहुत सालों से चला रहे हो, बट देयर इज अ टाइम जिसमें आप इसको बिल्कुल इरेडिकेट कर हटा देते हो। एंड देन ऑफ कोर्स वी आर ह्यूमंस, आ जाती है क्रेविंग, आ गई क्रेविंग। आपने एक दिन चलो भगवान को सॉरी बोल के खा लिया, बट वो क्रेविंग नहीं, वो लाइफस्टाइल बनती जा रही है हर दिन हर दिन हर दिन। तो फिर ऐसा कभी कभी कहने में सही लगता है, भाई मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसी क्यों हूँ।

0: जेट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडियावर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडियावर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
2: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
1: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
2: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
1: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
3: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
4: When City Rail Link arrives soon, it's going to give us all more time. From the new Karanga Ahapi station, you'll be able to go from a busy day at work in the city to the peaceful zen of home in Puhinui in just 32 minutes. Auckland Transport and City Rail Link. More connections that'll take you from the city to your place.
5: Everyday burn hazards are hotter than they look. Help the Burn Support Group support survivors and whānau. Text BURN to 4499 to make a $3 donation now. Proudly supported by the MediaWorks Foundation.
6: And if you're just joining us after the break, we're talking about... Holy... $10 deals on Uber Eats? Find $10 ding-dong deals on Uber Eats. T's and C's and fees apply. Contact support if promo not applied.

वेलकम बैक. हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स पे. मैं रक्षा आपके लिए आज लेकर आई हूँ ब्रेकफास्ट शो. एंड एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी है और देखने में उभर के आई है ड्यूरिंग मोदीज विजिट इज द अमाउंट ऑफ टैलेंट वी हैव इन दिस कंट्री. मल्टीपल छोटे छोटे छोटे छोटे परफॉर्मेंसेज जो हैं वो हियर एंड देयर मोदी जी के लिए अलाइन किया गया था. एंड इन ऑल ऑफ दोज परफॉर्मेंसेज आई वॉज सींग सो मच परफेक्शन. सो मतलब एफर्ट और अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस आउट ऑफ दोज पीपल जब वो परफॉर्म कर रहे थे. तो मुझे भी नहीं पता था ऑनेस्टली कि इतने टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पर. मतलब आई लुक्ड एट ऑल ऑफ दोज डांसिंग विच वॉज हैपनिंग. मतलब जो कल्चरल डांसिंग हो रही थी. एंड इंडिया बिकॉज इट्स अ मल्टी कल्चरल सोसाइटी बहुत अलग अलग वेरियस फॉर्म के डांस फॉर्म्स हैं हमारे में. यू कैन हैव कथकली, यू हैव भरतनाट्यम, यू हैव कथक, दीज आर फ्यू लाइक यू हैव भांगड़ा, यू हैव इनफैक्ट गणेश जी जो है इनके आगमन के लिए जो स्टार्टिंग में एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया गया था, डांस किया गया था विच वॉज लाइक अमेजिंग. मतलब आई एम सो प्राउड ऑफ ऑल द पीपल हु हैव परफॉर्म. मतलब लुकिंग एट इट एक बहुत दो तीन बहुत अच्छे क्या बोलते हैं माओरी रिप्रेजेंटेशन वाले प्रोग्राम्स किए गए विच वॉज लाइक अमेजिंग. मतलब मैं क्या बोलूँ, लोगों का ऑरा इतना गोटेड था कि अभी ये जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं इनका भी ऑरा थोड़ा नीचे लग रहा था. आई लाइक लिटरली आई लव द एंथुजियाज्म पीपल शोड इन ऑल ऑफ दोज परफॉर्मेंसेज. दे वर सो हैप्पी एंड इट वॉज कमिंग फ्रॉम विद इन. ऐसी बहुत सारी बातें आगे चल के. फिलहाल टाइम हो गया है चाय कॉफ़ी बनाने का. आप भी जाएँ, मैं भी जाऊँ और फिर मिलते हैं अगले घंटे.

0: Freedom Spend More Save More sale is on now. Spend $500, save 15%. Spend $1,500, save 20%. Spend $2,500, save 25%. The more you spend, the more you save. Only at Freedom.
1: वो दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी,
2: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना,
1: और गानों में जस्ट

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Rewind, सिर्फ रोवा पर.
1: The beat of Bollywood.
2: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
1: Brewing good vibes, Sunday style.
3: Sunday breakfast on Hum.
1: Sunday mood meter on Hum.
4: It's 5 degrees Celsius and it feels like 4 degrees Celsius to me. Anyways, अभी तो बहुत अच्छा फील हो रहा है. जब मैं सुबह सुबह अपनी गाड़ी से बर्फ हटा रही थी, गर्म पानी डाल रही थी, तब कोई ऑरा गोटेड ये सब कुछ नहीं आता रहा था मुझे. बस ये लग रहा था भाई सुबह सुबह ठंडी के मौसम में उठ के काम पे क्यों जाना पड़ता है. लेकिन द गुड थिंग वॉज दैट आई वॉज कमिंग टू डू दिस शो, जहाँ पर मुझे बहुत बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आता है हमेशा आपके साथ. नाम है मेरा रक्षा, आप मुझे सुन रहे हैं 104.2 हम FM पे, साथ में रोवा ऐप जो है इसके माध्यम से भी आप हमें सुन सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी वक्त. सो रोवा ऐप जो है इसको डाउनलोड करना ना भूलें. और जैसा कि मैंने बोला, इट फील्स लाइक 4 डिग्री सेल्सियस. बहुत बहुत बहुत सुहाना सा ठंडा मौसम है, मैं ये बोलना चाहती हूँ. सो द वीकेंड हैज़ बीन अमेजिंग, द लॉन्ग वीकेंड हैड ब्यूटीफुल वेदर आफ्टर लॉन्ग. अब बहुत अच्छा सनी वेदर देखने को मिला. इसके अलावा आज देखते हैं मौसम कैसा रहने वाला है फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. इट इज़ गोइंग टू बी फाइन अपार्ट फ्रॉम एरियाज ऑफ मॉर्निंग फ्रॉस्ट जो कि ऑलरेडी देख रहे हैं. एंड थोड़ा बहुत इवनिंग होते होते क्लाउड आने लगेगा बिकॉज ऑफ कोर्स मंडे ब्लूज जो है वो भी हमें हिट होने शुरू हो जाएंगे कहीं ना कहीं. सो मैक्सिमम टेम्परेचर 14, मिनिमम 6. इसके अलावा टेम्परेचर जो मिनिमम टेम्परेचर है इट इज़ गोइंग टू शो अ स्लाइट राइज ड्यूरिंग द वीक. बट वीक भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है. अ लिटिल बिट क्लाउडी हियर एंड देयर बट लुक्स लाइक क्वाइट अ सनी वीक. गोइंग इनटू द वीकेंड ऑल्सो इट लुक्स प्रीटी क्लियर राइट नाउ. तो हम पीक विंटर में हैं, विंटर इन्जॉय करने का टाइम है और साथ में प्यारे प्यारे गाने आपके लिए मैं लेकर आती रहूँगी इस घंटे. स्टे ट्यून्ड.

0: meter.
1: भाई विंटर की बात कर रहे थे, पीक विंटर की बात कर रहे थे। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने साउथ आइलैंड का ट्रिप जो है ये प्लान किया है, आप लैंड करते साउथ आइलैंड में, आपने प्रिपरेशन कर रखी है, मतलब आप नए कपड़े खरीदो या आप अपने सारे वॉर्मीज निकाल के उधर गए हो, बट जब आप वहाँ जाके अनपैक करते हो आप देखते हो कि बहुत आपके मेजर वॉर्मीज जो सबसे स्टाइलिश थे, जिसमें आपकी सबसे एस्थेटिक फ़ोटोज़ आएंगी, वो गलती से छूट जाती है एंड वहाँ से आपका मूड ख़राब होना शुरू हो जाता है। अब इसमें अगर मैं बोलूँ, मैं इसमें लड़का और लड़की का एंगल ही लाना चाहती हूँ, बिकॉज आई थिंक दिस इज़ समथिंग विच ऑल्सो बॉदर्स मैन अ लॉट। क्योंकि भाई वो होता है ना, आप इतना प्रेप करके जाते हो एंड देन एनीवेज दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। और उसके बाद दूसरा आ जाता है कि विंटर में उठ के चले तो गए, एक्साइटमेंट तो है यार, पर देखेंगे ये, लेकिन जब उसमें सुबह सुबह उठना पड़ता है और आपकी जब कुल्फी जमनी शुरू होती है, तो क्या आपको अंदर से थोड़ा रिग्रेट आता है थोड़ी देर के लिए, यार क्यों किया ये, क्यों किया, समर में ही आ जाते हैं। वेल, इसके थ्रू बहुत सारे मेरे दोस्त अभी जा रहे हैं जो कि साउथ आइलैंड में हैं और घूम रहे हैं, एंड आई एम गेटिंग ऑल द न्यूज़ एंड द गॉसिप्स एंड यू नो चैट्स एवरी डे। बट आई थिंक ये एक बहुत अच्छा टाइम है जहाँ पर साउथ में बहुत खूबसूरत हो रखा है, इरिस्पेक्टिव कि द वेदर वॉज रियली बैड लास्ट होल वीक हियर एंड देयर क्राइस्ट चर्च के अराउंड काइकोरा में इमेंस फ्लडिंग हो रखी है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप चाहे कितना भी प्यार करें ट्रैवलिंग को और वहाँ पहुँचने के बाद जितना भी खूबसूरत लगे, इसके थ्रू आप जाते हैं। अगर आपके पास कोई प्यारी सी ऐसी स्टोरी है अपनी साउथ आइलैंड विजिट को लेकर ड्यूरिंग द विंटर्स, प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें 5599 पर।

भाई पापराजी पेपराजी जैसे भी प्रोनाउंस करते हैं, मैं इतना इस पर ध्यान नहीं देती, लेकिन ये जो है ना, इनको बस कहीं से फालतू की चीज़ें चाहिए कि अपना खुद का गॉसिप बना लें। आई डोंट नो, मतलब गॉसिप कभी कभी ना ऐसी ऐसी गॉसिप निकल के आ जाती है जिसका ना कोई सर होता है ना कोई पैर होता है। यू नो देयर इज दिस कॉर्पोरेट गॉसिप, देन देयर इज मासी मम्मी का गॉसिप, एंड देन देयर इज दिस बॉलीवुड एंड क्रिकेट गॉसिप। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ, मेरे सामने विंबलडन सेमीफाइनल का एक पिक्चर है, और उस पिक्चर में क्रिकेटर शुभमन गिल अलॉन्ग विद बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे साथ में बैठे हुए हैं ये दोनों, बिकॉज इन दोनों ने इस इवेंट को अटेंड किया होगा। और लोग उसके ऊपर दिस पापराजी, हाँ ये जो है, इन्होंने इसके ऊपर स्टेटमेंट डाला है, कॉमेंट डाला है, दे लुक सो गुड टुगेदर। अब आपको पता ही है कि ये बात कहाँ जा रही है। अब इससे पहले एक और फोटो आई थी जिसमें जो शुभमन गिल हैं वो सचिन तेंदुलकर के साथ बैठे थे, और हमें पता है उनका एंगल कहाँ चल रहा है। तो फिर ये नया ट्राइंगल ला के क्या अचीव करना चाहती है ये सोशल मीडिया पापराजी। ऐसी बहुत सारी बातें आगे चल के ओनली ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।

बहुत ही ज्यादा मजा आता है जब आपके लीडर्स के अंदर भी काफी सारा ह्यूमर होता है और वो एंथुजियाज्म, वो क्या बोलते हैं, एनर्जी देखकर ना ऐसा फील होता है कि भाई नॉर्मल ह्यूमन बींग्स ही वो होते हैं जो सक्सेसफुल होकर एक दिन प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट बनते हैं। दिस इज समथिंग विच आई थिंक एवरी ह्यूमन बींग्स बींग मस्ट बी फीलिंग। और ऐसा मुझे लगा जब मैं क्रिस्टोफर लक्सन और मोदी जी की ये स्पीचेस सुन रही थी, जिसमें क्रिस्टोफर लक्सन ने अपना मतलब तीन चार जगह उन्होंने एक ही सेम चीज चिपकाया वैसे कि ही वेंट टू इंडिया इन हिज मिड 20s वेर ही यूज टू वर्क विद यूनिलीवर और यूनिलीवर की तरफ से गए थे, वो स्ट्रीट पे क्रिकेट खेलते थे एंड ऑल ऑफ दोस ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला थिंग्स। बट इट वाज लाइक क्वाइट फन टू नो हिज जर्नी बिकॉज अगर शायद ये स्पीचेस पाँच बार मैंने नहीं सुना होता तो मुझे पता नहीं होता। अब मैं आपको उस बात पर बोर नहीं करूँगी, लेकिन मोदी जी जो है अपनी स्पीच के बीच में आधा टाइम तो वो मतलब कॉमेडी करे जा रहे थे, मतलब, और उसमें मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि उन्होंने क्रिस्टोफर लक्सन और क्रिस हिपकिंस इनके डांस के बारे में बोला ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस डे, जहाँ पे क्रिस्टोफर लक्सन ने बहुत मतलब मज़ेदार एक आध दो स्टेप्स जो है ये पेल दिए थे शो के टाइम पे, तो वो कहीं से मोदी जी के कान में पड़ गए हैं, किसी ने उनको बता दिया एंड ही वॉज टॉकिंग अबाउट इट एंड क्रिस्टोफर लक्सन वॉज लाफिंग, इट वॉज लाइक क्रेजी एंड दैट क्या बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ ह्यूमर इन बिटवीन टू लीडर्स वॉज लाइक गोट।

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन्स दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन्स।
1: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
2: Sorry about that.
1: But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true. Kogan Mobile, true Aussie value. Terms and conditions apply.
3: Have you heard? It's your final day to shop Briscoe's for massive 70% off dream big deals, plus 20 to 70% off the entire store. The days are cold, but the savings are hot. Dream shop save for one final day at Briscoe's. See online for T's and C's.
4: Karan Aujla brings his P-pop culture world tour to New Zealand. Auckland, Spark Arena, this August. Tickets at livenation.co.nz. Don't miss Karan Aujla Live.
5: Chill, sip, smile.
6: This is Sunday Breakfast.
5: Sunday Mood Meter on Hum.
7: संडे ब्रेकफास्ट शो में आपका स्वागत है। मैं रक्षा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें पहले लोग अपने जॉब स्किल्स को डिस्प्ले करते थे ताकि उनको नेक्स्ट और अच्छी जॉब मिल जाए। आप समझ रहे हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट लिंक्डइन। आजकल हेडलाइंस में किसी और चीज़ के लिए ही आ गया है। और भी बातें करेंगे इसके बारे में। खैर बातें क्या करेंगे, मैं अभी ही कर लेती हूँ। लिंक्डइन को आजकल लोग डेटिंग टूल के जैसा यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है कि आपके DM में भी लोग स्लाइड करके ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मैरिड हो या नहीं हो, तो भाई लिंक्डइन का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। बिकॉज रिसर्च ऐसा कह रहा है कि 1 में से 8 लोग जो हैं, दे हैव स्टार्टेड अ रोमांटिक रिलेशनशिप थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, एंड 1 in 5 हैव यूज्ड टू रिसर्च अ पोटेंशियल पार्टनर। मैं पोटेंशियल पार्टनर वाला तो 1 in 5 क्या, मुझे लगता है 3 in 5 पीपल एक्चुअली डू रिसर्च ऑफ फ्यूचर पार्टनर। बिकॉज लिंक्डइन से पता चलता है कि क्या करियर पाथवे रहा है, बहुत कुछ आउट लाउड स्पीक करता है। बट दैट डजेंट मीन कि अगर आप लिंक्डइन पे बहुत स्मार्टली अपने प्रोफाइल को हैंडल नहीं कर रहे, आप अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। जैसे आई एम नॉट अ लिंक्डइन क्या बस सैवी पर्सन, क्योंकि उससे मेरे जॉब से इतना कुछ लेना देना नहीं है। बट इन जनरल आई थिंक कि लोग स्टॉक करते हैं यार लिंक्डइन पे। आई थिंक अगर आप मैट्रिमोनी प्लेटफॉर्म्स या अगर आप डेटिंग प्लेटफॉर्म्स पे आप किसी को मिले हो एंड यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट दैट पर्सन, द बेस्ट प्लेटफॉर्म इज़ लिंक्डइन। और कहाँ करेंगे आप ही बताइए। फेसबुक पे क्या नज़र आता है और इंस्टाग्राम पे क्या ही देख लोगे। रियल जो मुद्दा है वो तो लिंक्डइन से ही सामने आता है। आपका क्या कहना है?

सो टिकल योर टेस्ट बड्स. जैसे ही मैंने सोचा तब से मेरे टेस्ट बड्स एकदम हाइप्ड हैं. आई एम रियली हंग्री एंड आई रियली वॉन्ट टू गो एंड ईट छोले भटूरे. आज मेरा वो वाला मन है बिकॉज बहुत ज़्यादा ठंड है. बट मैं छोले भटूरे खाने नहीं जा रही हूँ. मैं कुछ और खाऊंगी जिसके बारे में मैं और अभी आप बात करेंगे. बट यहाँ पर आई वॉन्टेड टू शेयर समथिंग. मैं पढ़ रही थी अबाउट जापानीज क्यूजीन, जिसमें सबसे ज़्यादा जापानीज क्यूजीन को हम इसलिए जानते हैं बिकॉज दे यूज़ फ्रेश इन्ग्रीडियंट्स एंड प्रेजेंटेशन काफ़ी सिंपल रहती है. पॉपुलर सबसे ज़्यादा सुशी, रेमन एंड एक ऐसी चीज़ जो मैंने कभी नहीं खाई है, टेम्पूरा. ये मैंने कभी नहीं खाया. आई डोंट नो व्हाट दिस इज. बट फन फैक्ट क्या है, जो सुशी है इट ओरिजिनली बिगैन एज अ वे टू प्रिजर्व फिश. सो फिश को प्रिजर्व करते करते एक ऐसी डेलिकेसी ये लोग ले आए जो कि मतलब दुनिया के हर कोने में इंसान इन्जॉय करता है, फेमस है एंड ओवरऑल क्या बोलते हैं, हेल्थ के लिए भी अच्छा है बिकॉज ऑफ द इन्ग्रीडियंट्स एंड कैलोरी एंड फलान एंड हिमकान, जो आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है. सो लाइफ वॉज रियली मच बेटर बिफोर दिस कैलरी काउंटिंग शिट हैपेंड. बट समहाउ इट इज़ वॉट इट इज़. सो दैट इज़ हाउ सुशी ओरिजिनली बिगैन एंड इट वॉज टू प्रिजर्व फिश. इसके अलावा हम ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे और आप ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे, मैं ब्रेकफास्ट में क्या खाऊंगी और आप ब्रेकफास्ट में क्या खा रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताएं अपने नाम के साथ. और आप कहाँ से मुझे सुन रहे हैं, 5599 पर.

0: की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: हाँ, वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
2: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year Master Builder Guarantee, awards pour in.
3: And award goes to Indelible Homes.
2: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite Master Builder.
0: Kahani of Indelible Homes.
4: Just because you own a business, it doesn't mean your life is split in two. Your personal life shows up in your business space. And business shows up in your personal space. So shouldn't your bank see the bigger picture? At ASB, one banker handles both your business and personal worlds. Because you're one person, not two accounts. ASB, get one step ahead.
5: Rebel's long weekend sale is nearing the finish line with deals too hot to miss. It's the final days to score epic half-price deals on clothing, shoes and more. Plus, get a scorching 20 to 40% off store-wide. Hurry, sale ends Monday, only at Rebel Sport. See you live at T's and C's.
6: JB Hi-Fi's long weekend price frenzy on now. Save big on phones, TVs, computers and more. Get a whopping $500 off the Samsung 65-inch smart TV. Ends 15th July. JB, you've done it again.
7: Stuck for dinner ideas? Faro Kitchen has you covered with fresh, chef-created meals that are ready in no time. Dive into rich chicken tikka with creamy, tangy sauce and aromatic spices. Or classic smoked fish pie, tender, flaky fish, buttery bechamel and a golden kumara mash. Faro Kitchen's oven-ready meals make wholesome dinners quick and stress-free. Available online or at your local Faro store. Just pop it in the oven and relax. Faro Kitchen, dinner made deliciously easy.
8: And फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
9: अच्छा,
8: बताओ, तो आड़ा फोकस फोकस, साड़ा कुछ नहीं?
9: मिसेस सिंह,
10: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
11: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहुहु। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
12: Chill, sip, smile.
13: This is Sunday breakfast.
12: Zaika, to feel hope. Tickle your taste buds.
14: चॉपस्टिक्स जो है, इसको यूज़ करना मेरे लिए उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है जितना शायद किसी के लिए, किसी बिगिनर के लिए 10 पुशअप पुलअप करना होगा। इतनी बार मैं ट्राई कर चुकी हूँ लेकिन समहाउ आई हैव नो आइडिया कि क्यों नहीं मैं चॉपस्टिक से खा पाती हूँ। लेकिन फ़न फैक्ट क्या है, जो ये चॉपस्टिक्स हैं ये चाइना में यूज़ किए जा रहे हैं फॉर ओवर 3000 ईयर्स। 3000 साल से ये लोग यूज़ कर रहे हैं और मैं भी तकरीबन 15-20 साल से अपने अराउंड सबको यूज़ करते हुए देख रही हूँ। मेरा दोस्त अभी सीख चुका है, मेरा भाई बहुत अच्छे से चॉपस्टिक से खाता है, एवरी वन अराउंड मी इन माई लाइफ कैन यूज़ दिस चॉपस्टिक, बट ये कला मेरे अंदर क्यों नहीं है। बट उसी से मुझे याद आया कि क्या आप चॉपस्टिक से अच्छे से खा पाते हैं, क्या आप कंफर्टेबल हैं, क्या आपको पता है, क्या आपके अंदर वो इंटेलिजेंस है कि आप मेरे जैसे एक पर्सन को सिखा सको कि भाई रक्षा ऐसे खाना है। मैं ऐसे एक इंसान की तलाश में हूँ अपनी ज़िंदगी में जो मुझे चॉपस्टिक से खाना सिखा पाए। अगर आपके अंदर ये टैलेंट है, प्लीज़ प्लीज़ रीच आउट टू मी @5599।

वेल, क्यूजीन की बात कर रहे थे तो हम कैसे पीछे छोड़ सकते हैं अपना न्यूजीलैंड क्यूजीन, जहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डेलिकेसी जो है वो मैंने खाई है. यस, ये मैंने खाई है. इसको कहते हैं हांगी. दिस इज़ अ वेरी पॉपुलर डेलिकेसी. और जो हांगी है ना, इसको बनाते हैं अंडरग्राउंड यूजिंग हीटेड स्टोन्स. तो मैंने ये देखा भी है कि इसको कैसे बनाते हैं, एंड भाई क्या अमेजिंग लगता है. एंड ऑल्सो न्यूजीलैंड में फ्रेश सी फूड, लैम एंड सीजनल प्रोड्यूस जो है इसको काफ़ी ज़्यादा इसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा होती है, और ये काफ़ी अच्छा मिलता है यहाँ पर. साथ में पॉपुलर डिशेज में जैसे मैंने बोला हांगी आ गया, पावलोवा आ गया, विच इज़ समथिंग विच आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ, बट हांगी जो है, येस दिस इज़ समथिंग विच आई डू लव. इसके अलावा देखते हैं यहाँ पर हमारी जनता जो है ये क्या कहना चाह रही है, इनको क्या पसंद है. तो चॉपस्टिक से हमारी जनता मैक्सिमम खा पाती है, लेकिन प्रेफर नहीं करती है खाना. थैंक यू, एटलीस्ट कहीं ना आपने हमें अच्छा फील कराया और अच्छा फील हो रहा है. इसके अलावा सुशी के बारे में लोगों का कहना है कि हाँ, जब ऑफिस जाते हैं तो बस में सबसे अच्छा शॉर्टकट में खाना अच्छा यही मिलता है, और इसको खाने के बाद नींद नहीं आती है. आई जस्ट लव दिस आंसर. दिस इज़ अमेजिंग, अ वेरी गुड आंसर. हाँ, इतना अच्छा लाइट खाने के बाद नींद कैसे आएगी, पेट भी भर जाता है, थोड़ी एनर्जी भी आ जाती है, एंड वापस से काम पर जाने का भी वो मन करता है, नहीं तो फिर काम कैसे करेंगे. काम से याद आया, ये लॉन्ग वीकेंड जो है ये चल रहा है. इट्स अ ब्यूटिफुल अमेजिंग संडे टुडे. अपने दिन को बहुत प्यार से बिताइए. प्यारे प्यारे गाने आपके लिए बैक टू बैक.

0: FM.
1: Unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram-friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
2: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं.
1: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
3: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहाँ आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
4: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
3: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
4: Available at selected branches. T's and C's apply.
5: Your local board does all sorts of things in your community. That local event you love, the playground down the road, the park where you spend time with family and friends. And every 3 years they plan what to do next. Now's the time to let them know what you think is important where you live. Visit akhaveyoursay.nz/localboardplans. Tell us by 23 July. Local voices, local choices. Tāmaki Tūriki. All together, Auckland.
6: Rebel's long weekend sale is nearing the finish line with deals too hot to miss. It's the final days to score epic half-price deals on clothing, shoes and more. Plus, get a scorching 20 to 40% off store-wide. Hurry, sale ends Monday, only at Rebel Sport. See you on T's and C's.
7: The King Living Winter Sale ends soon. Save up to 50% on Australian-designed, award-winning furniture. Come home to the future of furniture. Come home to King. Sale ends soon. Shop online or visit a King Living showroom today.
1: Brewing good vibes, Sunday style.
8: Sunday breakfast on Hum.
1: Zaika to feel ho. Tickle your taste buds.
9: क्विजीन की बात हो रही है, खाने की बात हो रही है, टेस्ट बड्स की बात हो रही है, तो एक ऐसी डिश जो मेरे लाइफ में इंट्रोड्यूस हुई है तकरीबन 2-3 साल से, 2-3 साल बैक, और वो भी यहाँ पर हम के दौरान ही, जहाँ पर विजय और पूजा जो हमारे ब्रेकफास्ट शो के होस्ट हैं, वो एक बार बहुत अच्छी फीजी स्टाइल बिरयानी लेकर आए थे. इट वॉज़ ड्यूरिंग वन ऑफ आवर कैचअप्स एंड ओ माई गॉड, मैं कभी भूल नहीं सकती उस बिरयानी को. टेक्निकली आई थिंक इट इज़ बेसिकली प्रिपेयर्ड एज अ पुलाव, बट क्या अच्छा ब्लेंड था ऑफ द चिलीज एंड करी लीव्स एंड लोकल हर्ब्स. आई मीन अमेजिंग. आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू फाइंड दैट काइंड ऑफ बिरयानी, बट मुझे वैसा वो जो था वो मुझे कभी वापस से एग्जैक्टली जो उस दिन लगा था ना, आज तक नहीं मिला 3-4 साल में. वैसे बीइंग अ फूडी आई एम रियली गुड एट यू नो सर्चिंग व्हाट आई लाइक. कहीं ना कहीं से मैं ढूंढ लेती हूँ और बनवा लेती हूँ, और ये सब जो मेरे टैक्टिक्स हैं और शाणापंती है, मेरे को कॉलेज में बहुत काम आया था जब कैंटीन में 2 या 3 चीज़ें ही मिलती थी और मैं उनसे पैसे देकर ये वो इधर उधर काम वाम करवा लेती थी. जैसे भैया लोग को, भैया पराठे बना दो, ये कर दो, वो कर दो. इनफैक्ट अपने ही कॉलेज में नहीं, अपने कैंपस के बाहर बाजू वाले कॉलेज के कैंटीन की भी एंट्री लेकर, और वहाँ से भी मैंने ये सब काम कराए हैं. बीइंग अ फूडी आई जस्ट लव यू नो दिस टेस्ट बड जो होता है, ये मेरा हमेशा काफ़ी हाइप्ड रहता है. अब चलो इसको अच्छा बोलो या बुरा बोलो, जो भी है, बट अभी ऐसा ही है. सो यार, फीजी की जो ये बिरयानी है, जो पुलाव है, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, प्लीज़ बताएं कि ऑकलैंड में ये फीजी स्टाइल जो बिरयानी है ये कहाँ पर अच्छी मिलती है. प्लीज़ अगर आपके अच्छे रिकमेंडेशन से या कोई ऐसी जगह जहाँ पर बहुत अच्छा सा इसका रेसिपी हो, मैं वैसे बनाना इतना नहीं प्रेफर करूँगी, आई वुड रियली वॉन्ट टू गो एंड बाई, आप क्या मुझे बता सकते हैं? क्या अगर आप मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे बता सकते हैं 5599 पर. थैंक यू.
1: नॉन स्टॉप बॉलीवुड
10: शिद्दत के साथ.

कुमार सानू एंड लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे ये गाना। दिस इज सच एन अमेजिंग सॉन्ग। मतलब जो रोमांटिक वाइब है ना इस गाने की, वो बहुत ही ज्यादा वो कहते हैं ना करिज्मेटिक है। करिज्मेटिक यार, आजकल वर्ड्स को इतना ज्यादा अलग अलग लिंगों में बोला जाता है ना, कभी कभी मुझे लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है। बट एनीवेज, लेट्स मूव टूवर्ड्स अ बिग इवेंट जहां पर परफॉर्म करने वाले हैं राज गद्वी जी, जो कि लाइव परफॉर्म करने वाले एट महात्मा गांधी सेंटर ऑन सैटरडे द 1st of August। तो लोटस प्रोडक्शंस, श्री इवेंट न्यूजीलैंड, विनय मेहता एंड प्रांशी ग्रुप जो हैं, ये आपके लिए लेकर आए हैं ये कल्चरल सेलिब्रेशन। अभी यहाँ पर इन ऑकलैंड, ओवरऑल इन न्यूजीलैंड, हम बड़े धूमधाम से जो हैं ये गरबा नाइट्स सेलिब्रेट करते हैं। बहुत बड़ा क्राउड होता है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उस क्राउड में जो होस्ट कर रहे हैं वो होने चाहिए कुछ ऐसे अमेजिंग से जो कि लेकर आए वो इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड ऑफ कोर्स द मेस्मराइजिंग वॉइस ऑफ राज गद्वी जी जो हैं लाइव ऑन स्टेज, ये क्रिएट करने वाला है वही ऑरा जो कि होने वाला है सुपर डुपर गोटेड। आई डोंट नो ये ऑरा और गोट मेरे दिमाग में क्यों चल रहा है अभी पिछले दो दिन से। बट शनिवार 1st of August महात्मा गांधी सेंटर पे ये इवेंट होने वाला। अधिक जानकारी के लिए आप स्वप्निल शाह जी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन 022-439-4736। एंड साथ में टिकट्स के लिए आप डेफिनेटली इवेंट्स टिकट्स न्यूजीलैंड पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो द इट इज इवेंट विदाउट एन एस टिकट नो सॉरी विद एन एस सो इट्स इवेंट्स ई वी ई एन टी एस विद एन एस टिकट्स अगेन विद एन एस TICKETS.co.nz पर।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
3: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। I have lots of fun basically with the cold weather।
2: कौन है?
3: Hunua और Waitakere।
2: अच्छा Hunua west में?
3: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedsworth, Monaco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: Weekdays 6 to 10 a.m.
5: Do you know why so many of your neighbors are installing a shower dome shower top? Just watch the demo video at showerdome.co.nz. You'll see how a shower dome stops steam misting up your mirrors, stops mold and mildew, and saves energy. No extractor fans required. The best thing you can do for your home is install a shower dome. Available now from your local installer.
6: Shower dome.
7: Proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
8: Indelible Homes, your building expert.
9: Farmers Long Weekend Sale is now on with 10% off fragrance and selected beauty, up to 40% off women's, men's and kids' clothing, plus up to 40% off lingerie and men's underwear. Farmers Long Weekend Sale now on. Conditions and exclusions apply.
10: Stuck for dinner ideas? Furrow Kitchen has you covered with fresh, chef-created meals that are ready in no time. Feed the family with classic lasagna, silky pasta, rich ragu and cheesy bechamel, or classic smoked fish pie, tender, flaky fish, buttery bechamel and a golden kumara mash. Furrow Kitchen's oven-ready meals make wholesome dinners quick and stress-free. Available online or at your local Furrow store. Just pop it in the oven and relax. Furrow Kitchen, dinner made deliciously easy.
11: Karan Aujla brings his P-pop culture world tour to New Zealand. Auckland, Spark Arena, this August. Tickets at livenation.co.nz. Don't miss Karan Aujla live.
12: Auckland Transport is upgrading your rail network this July as we get closer to more trains more often with City Rail Link in 2026. Between Thursday 9th July and Sunday 12th July, all train lines will be closed for a City Rail Link timetable trial and for essential rail upgrades. This is the best time for AT and our partners to carry out the upgrades. Buses will replace all impacted services. For details, visit at.govt.nz/matariki2026.
0: Brewing good vibes, Sunday style.
13: Sunday breakfast on Hum.
14: So fans' favorite flashback में आज जो fans' favorite flashback में आज जो है मैं बात करूँगी अपना favorite flashback के बारे में और साथ में आपसे भी पूछने वाली हूँ कि भाई आपका क्या है, मुझे ज़रूर बताएं 5599 में। एंड आई थिंक ये जो flashback की मैं बात करने वाली हूँ ये आपका, मेरा और हम सबका है growing up who has been a Bollywood fan। सो मैं बात करने वाली हूँ ऑफकोर्स ऐसी कौन सी मूवी जिसने सबसे पहले न्यूजीलैंड को पिक्चर में डाला कि हाँ भाई ऐसी भी जगह है जहाँ पे जाके शूटिंग होती है। उससे पहले भी मूवी शूट हुई थी लेकिन किसी ने इस चीज़ को इतना लाउडली सामने नहीं रखा जितना कि रखा कहो ना प्यार है नहीं। सो दिस मूवी ऑफकोर्स वॉज शॉट इन न्यूजीलैंड एंड क्या सीनरी है, आई मीन क्या मैजिक है, लाइक इट्स अ परफेक्ट मिक्स ऑफ बॉलीवुड मैजिक एंड कीवी सीनरी इज़ वॉट आई वॉन्ट टू से। एंड ना तुम जानो ना हम, दैट होल सॉन्ग, द वे इट स्टार्ट्स, द म्यूज़िक, the car, the road, the snow, the mountain, उसमें ऋतिक रोशन, अमीषा पटेल, अमीषा की वो स्कार्फ, आई मीन ऑल ऑफ दैट इज़ लाइक एन अमेजिंग, ब्यूटिफुल, वेरी रोमांटिक एक्सप्लिसिट फ्लैशबैक जिसको मैं कहूँगी। आई मीन आई एम टॉकिंग, माई आईज़ आर क्लोज एंड आई एम थिंकिंग अबाउट दैट होल सॉन्ग। और साथ में जैसे जैसे गाना प्रोग्रेस होता है, आई मीन द वे द सन इज़ यू नो फॉलिंग ऑन जो एक्ट्रेस की क्लोथिंग होती है जिसमें उनको अलग अलग कलर से के लहंगे पहनाए गए, मतलब इट्स नॉट अ प्रॉपर लहंगा, इट्स क्वाइट अ स्टाइलिश लहंगा, उतनी ठंडी में अमीषा ने कैसा पहना गॉड नोस, बट एंड देन दिस हैंडसम हैंडसम बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन लाइक अ ग्रीक गॉड ही इज़ परफॉर्मिंग, दैट लश ग्रीनरी, द बैकग्राउंड, आई मीन द ड्रॉप, एवरीथिंग इज सो अमेजिंग, एंड ऑफकोर्स उसके ऊपर ये जो इतना खूबसूरत सा गाना है इसको मैं कैसे कैसे बोल सकती हूँ. तो चलिए आगे आपके लिए यही गाना ओनली ऑन हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स.

कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर, ऐसे कॉमेडियंस जिनको हम काफी टाइम से देखते आए हैं लेकिन कभी नहीं सोचा कि लाइव देखने को भी मिल सकता है। इन दोनों के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम एंड ऑफ कोर्स बिकॉज देर आर टू कॉमेडियंस, डबल द लाफ्टर, डबल द कॉमेडियंस, आई मीन द अदर वे, डबल द कॉमेडियंस एंड डबल द लाफ्टर। मैंने इसको घुमा के बोला लेकिन आप जानते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। सो फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑकलैंड, यहाँ पे ट्राई विजन इंटरटेनमेंट आपके लिए लेकर आया है द ग्रेट कॉमेडी नाइट, जहाँ पर कृष्णा अभिषेक एंड राजीव ठाकुर दोनों लाइव ऑन स्टेज परफॉर्म करेंगे। तो होने वाला है बहुत ज़्यादा रेजर शार्प पंच लाइन वाला दिन, ज़बरदस्त ऑडियंस इंटरैक्शन, ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ लाफ आउट मोमेंट्स, ये सब होने वाला है। VIP टिकट्स इसके ऑलरेडी सेल आउट हो चुके हैं, सो देर इज नो VIP टिकट्स लेफ्ट। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है यार, जब ऐसे स्टार्स हो क्या VIP टिकट और क्या नॉर्मल टिकट। बस टिकट खरीद लो www.bookmyevent.co.nz पर। 18 जुलाई को विक्ट्री कन्वेंशन सेंटर पर ये इवेंट जो है ये होने वाला है। सो दिस इज, इसके अलावा अगर आप 0800-004-866 पे फ़ोन करेंगे तो आपके पास मौका है पासेस जीतने का ऑन हम। ये कैसे होगा, मंडे टू फ्राइडे ज़रा ध्यान से हमें सुनते रहें 12 घंटे के ब्रैकेट में, विच इज़ 6 AM to 6 PM, प्रीटी मच फ्रॉम ब्रेकफास्ट शो, माई टाइम, लंच बॉक्स एंड ड्राइव शो के दौरान, जहाँ पर एक आपके लिए हम एक छोटा सा लाफ्टर चैलेंज टाइप का क्रिएट करेंगे, सम जोक काइंड ऑफ। और ऐसा करके अगर आप ध्यान से सुनेंगे कि आपको हम क्या इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और उसको आप फॉलो करोगे तो आपके पास मौका है पासेस जीतने का। सो स्टे ट्यून्ड एंड साथ में वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ग्रेट कॉमेडी नाइट फीचरिंग कृष्णा अभिषेक अलॉन्ग विथ राजीव ठाकुर।